0: तू चंदा मैं चांदनी, तू तरुवर मैं छाँव रे, तू बादल मैं बिजली। तो देखिए मोहन साहब, ये इगैलिटेरियन टेंडेंसी चल रही है यहाँ पे कि नहीं? देखिए कि वो बोल रहे हैं कि कभी तुम आगे हो कभी हम आगे हैं। ओके, तू बादल मैं बिजली इज क्लियरली अ स्टेटमेंट दैट आप ही, यू नो, yeah, so you know,
1: see, the lovers could be egalitarian, okay, lekin this song is unparalleled.
0: Iska
1: koi egalitarianism nahi hai. Iska Baal Kavi Bairagi is Hindi, number one.
0: Yes.
1: Okay. And secondly, Jaydev's music, and each antara was different.
0: And you know, the number of times he changes music on you. तो राकेश जी बोलते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड मिला, भाई क्यों नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया गीत बनाया,
1: क्यों नहीं मिलेगा भाई? दिस शुड हैव रिसीव्ड द ऑस्कर फॉर म्यूजिक, नॉट जस्ट द फिल्म फेयर अवार्ड। आई मीन, आई डोंट नो इफ फरमाइश में आपने कभी किया हो कि एक ही गाना दो बार बजाए बैक टू बैक। If you allow that, I don't mind listening to that song again. Serious. What a song.
0: भाई, वो तो ठीक है, पर चांद तो एक ही बार निकलता है शाम को।
1: ये भी बात सही है। And the next song is not a ऐसा वैसा गाना नहीं है, it is a बसंतदार song, and शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ सॉन्ग है, एंड इफ इट वाज शैलेंद्र देन इट हैड टू बी शंकर जयकिशन ऑफ कोर्स, एंड द मूवी वाज सीमा, 3 years बिफोर आई वाज बॉर्न।
0: अभी फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ये तमिलियंस आर हॉरिबल मैथमेटिशियंस यार।
1: सीरियसली, वो पढ़ते थे ना कि कुछ भी मार्क्स लेके आओ, लेकिन
0: अच्छा चलिए 1955 मैंने गेस किया, इज दैट राइट?
1: 1955 सही है। यू नो, हम लोग ऐसे थे कि मैथ में अगर 98 मिला तो पिताजी पूछते थे कि ये दो मार्क गया कहाँ।
0: सही बात है।
1: सो एनीवे, शैलेंद्र शंकर जयकिशन एंड मन्ना दे सिंगिंग राकेश शुक्ला साहब्स फरमाइश, अ सॉन्ग that is unparalleled in many respects, picturized on Balraj Sahani. Let's listen to Tu Pyar Ka Sagar Hai.

0: जाएगी।
1: यू नो मोहन, समटाइम्स आई विश आई वाज एन एक्टर इन द 1940s। क्या मजेदार मोमेंट्स होते थे उनके। इफ यू लुक एट सम ऑफ दीज ओल्ड सॉन्ग्स एंड द वे दीज गाइज मूव, यू नो दे हैव द मोस्ट अनयूजुअल मूव्स यू कैन एवर बिलीव।
0: करेक्ट,
1: इट्स लाइक
0: दे हैड टू, दे हैड टू सिंग, दे हैड टू एक्ट, दे हैड टू डांस, दे हैड टू डू एवरीथिंग।
1: सही बात।
0: सो इफ यू डिडंट हैव एन एलिमेंट ऑफ वर्सेटिलिटी इन यू, आप 1940s में तो आप कुछ कर नहीं सकते थे, राइट? यू हैड टू बी गुड एट एवरीथिंग। And but for the next song, all you needed was a fantastic music director,
1: right? A.R. Rahman.
0: A.R. Rahman. And you know, I loved the movie. It was a great film. Arvind Swamy and Manisha Koirala did a beautiful job in the movie, and the song was sung by Hariharan, who carried a lot of weight on his head. Right, quite literally, because I think he would have been an even better singer than he was if he had cut his hair. But anyway, so but with
1: well, he was in no hurry to cut his hair. That's why he was Hariharan.
0: Hari. Hariharan. Stripped of any hurry.
1: चलिए सुनते हैं तू ही रे। But there's a twist here, Mohan. This is with Hariharan and Kavita Krishnamurti.
0: Yeah.
1: चलिए सुनते हैं।
0: Let's listen to the song. Yeah. Hariharan.

0: भाई चंदन साहब, क्या रिक्वेस्ट की आपने, मजा आ गया इस गीत के साथ। पर या बट यू नो मोहन, तू मेरे सामने हैज अनदर ब्यूटीफुल नंबर फ्रॉम सुहागन फ्रॉम 1964।
1: करेक्ट करेक्ट, यस यस, आई नो द नंबर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट।
0: उसको बजाएं अभी की, बिकॉज दोनों सुधीर और शाहिद ने इसको सेलेक्ट किया, तो थोड़ा सुन लेते हैं। सुन लेते हैं।
1: इट्स अ रफी साहब सॉन्ग, आई थिंक रिटन बाय हसरत जयपुरी, आई डोंट नो इफ इट वाज शंकर जयकिशन, प्रोबेबली शंकर
0: मदन मोहन, मदन मोहन सर।
1: अरे
0: या आपको मदन मोहन के बारे में बताना पड़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपके दो फेवरेट हैं। चलिए सुनते हैं।
1: नो बट आई सेड हसरत साहब का।
0: या ओके
1: ठीक है, ओके लेट्स गो।

0: तो ये तो रहे मोहम्मद रफ़ी हसरत जयपुरी के बोलों के साथ और मदन मोहन का म्यूजिक. मोहन, हाउ कैन वी गेट इट इवन बेटर देन दिस?
1: इट इज़ वेरी वेरी हार्ड.
0: सो वेरी हार्ड. पर शीला मेहता की एक लास्ट मिनट फरमाइश आई है.
1: अच्छा जी.
0: बड़ा ही मज़ेदार मराठी नंबर है.
1: अच्छा,
0: तू सप्ता nice. सुर माझे. अच्छा ये है, यू नो, सो फॉर ऑल ऑफ अस जो जो गाने नहीं सुने हैं उनको सुनना हमारे लिए एक गिफ्ट होती है. आप अभी तो ये बजाएं इसको.
1: एब्सोल्युटली, पूछने की बात.
0: चलिए ये बजाते हैं और फिर उसके बाद आपका फिनाले नंबर से कंक्लूड करते हैं.
1: करेक्ट.

0: This is Bharat FM.
1: Bajega Bharat, jhumega Bharat.
2: हेलो हेलो हेलो हम सफर्स नमस्ते सत श्री अकाल किमचो वनकम सलाम। मैं हूं आपकी अपनी आरजेडी और आज के इस हम सफर शो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूं। आपकी वर्क कम्यूट को मैं रिलैक्सिंग, चिल्ड आउट और स्ट्रेस फ्री बनाऊंगी, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। तो देर किस बात की है, जूम कॉल्स और स्प्रेडशीट्स को गुड बाय बोलिए, ईयरबड्स पहनिए और बन जाइए मेरे हम सफर। तो हम सफर इस पिछले हफ्ते मेरा मूड बहुत रोमांटिक सा हो रहा था, जिसके चलते मैंने आपको आंखों ही आंखों में हुए प्यार वाले गाने सुनाए। तो आप में से कुछ हम सफर्स को ये मेरा रोमांटिक मूड शायद ज्यादा अच्छा नहीं लगा। जैसा कि शोभित लिखते हैं कि आपके शो पर सैड गाने ही मलहम का काम देते हैं, तो वही सुनाया कीजिए। और सोनाली ने भी लिखा कि आंखों से इशारे तो हो गए, मगर अब उनसे जुड़े हुए आंसुओं के बारे में भी बताइए हमको। तो चलिए, शोभित और सोनाली की रिक्वेस्ट पर मैं वापस अपने कंफर्ट जोन यानी सैड सॉन्ग्स की तरफ चलती हूँ। तो क्योंकि लास्ट वीक हमने आंखों की बातें की थी, तो आज सोनाली की रिक्वेस्ट पर हम बातें करेंगे उन आंखों में से जब आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं की। सो प्रेजेंटिंग टू यू एंड फॉर यू, आंखों में आंसू भर आए।

आप सुन रहे हैं भारत FM और मैं हूं आंखों में आंसुओं की नमी को डीपली महसूस करती हुई आपकी आरजे डी। तो हम सफर जब हमारी लव लाइफ में कोई सेटबैक आता है तो बस ऐसा लगता है ना कि जैसे पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। अपनी आगे की जिंदगी को हम अकेलेपन और आंसुओं से भरी हुई ही इमेजिन करते हैं। उस वक्त जो दिल से आह निकलती है वो कुछ ऐसी होती है।

वेलकम बैक। तो हम सफर से बात कर रहे थे कि जब प्यार में दिल टूटता है तो कैसा आलम होता है। दिल का हाल जो बेहाल रहता है उसकी दास्तान आंसू ही बयां कर देते हैं, चाहे जबान से कुछ निकले या ना निकले। और जब आंखें आंसुओं से भरी हों तो उनमें और कुछ कैसे समा सकता है, ना नींदें और ना चैन।

नमस्कार सत श्री अकाल वेलकम एंड आदाब यू आर लिसनिंग टू भारत एफएम और वन ऑफ इट्स काइंड मल्टीलिंगुअल एक्लेक्टिक प्रोवाइडर ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ टू इंडियन अमेरिकन्स हेडक्वार्टर्ड इन सिनसिनाटी ओहायो भारत एफएम एयर्स शोज आउट ऑफ सिनसिनाटी शिकागो एंड फीनिक्स We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070.

वेलकम बैक। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप आज मेरे हमसफर बनकर मेरे और इस शो के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए इस आंसू भरी दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। तो हमसफर, ऐसा तो जरूरी नहीं कि आंसू सिर्फ अकेले बहाए जाएं। मुझको तो लगता है कि किसी दोस्त या वेलविशर के सामने भी अगर दिल का गुबार निकाल लिया जाए तो दिल काफी हल्का हो जाता है। कहते हैं ना, कैसे रोकूं जो अश्क आंखों से ढल जाते हैं, कैसे रोकूं जो अश्क आंखों से ढल जाते हैं, दिल के कुछ दर्द हैं आंखों से निकल ही आते हैं।

वेलकम बैक। आप हैं मेरे साथ यानी अपनी थोड़ी गमगीन मगर बहुत होप से भरी हुई आरजे डी के साथ भारत एफएम पर। भारत एफएम साथ है तो लाइफ में कुछ बात है। तो हमने अब तक बातें की कि प्यार में सेटबैक्स होने पर जो आंसू निकलते हैं उस वक्त की, मगर जरूरी तो नहीं कि आंखें बस तभी भीगें जब प्यार में सेटबैक हो। कभी अगर बॉस ने डांट दिया या फिर हमको कोई दुखद समाचार मिला हो, ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जिंदगी में जब आंसू बिन बुलाए आ ही जाते हैं।

वेलकम बैक। आज की कम्यूट के इस हसीन सफर पर हम आंसुओं से अपनी आंखें धो रहे हैं और अपने दिलों को हल्का कर रहे हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आंसू कैसे बिन बुलाए मेहमान होते हैं, मगर हमेशा उनकी नेगेटिव कॉनोटेशन हो ऐसा तो जरूरी नहीं। तो चलिए कुछ देर बात करते हैं खुशी के आंसुओं की। जिंदगी की कुछ ऐसी मोमेंट्स भी होती हैं जब किसी चीज पर हमको प्राइड होता है या फिर किसी मुश्किल घड़ी से निकलने पर रिलीफ मिलता है। ऐसी मोमेंट्स में भी आंखों में आंसू बस अनायास ही आ ही जाते हैं, और वो आंसू तो मेरी नजर में बहुत ही क्लेंजिंग और सुकून देने वाले होते हैं।

वेलकम बैक। आई होप आज के इस आंसुओं से भरे सफर में आपको भी उतना ही सुकून मिल रहा है जितना कि मुझको। तो चलिए आंसुओं के एक और एस्पेक्ट की बात करते हैं। हमारे फ्रेंड्स या फैमिली में आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूवीज़ में, शोज़ में या फिर किसी सेंटिमेंटल एडवर्टाइजमेंट देखकर भी रो पड़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद को इन सिचुएशंस में अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। मुझको तो लगता है कि जो लोग खुलकर ऐसी सिचुएशंस में भी रो पाते हैं जहां पर उनका अपना कोई पर्सनल लॉस नहीं भी हो, मगर एम्पथी के चलते उनके आंसू निकल रहे हैं, ऐसे लोग बहुत इमोशनली मैच्योर होते हैं। कई बार तो ऐसे लोगों का हम मजाक भी उड़ाते हैं, मगर पर्सनली मुझको लगता है कि वो लोग इमोशंस के एक बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं। I feel like these people are on a completely different emotional plane than most of us. आप भी सोचिए कि आप emotions और empathy के किस level पर हैं। मैं खुद आपको बता दूं कि मैं movies और ads के sentimental scenes पर खुल कर रोती हूँ।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। अगर आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो एडवर्टाइज कीजिए भारत FM पर। यू कैन ईमेल अस एट info@bharatfm.com। अपनी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में आप भारत FM को अपना पार्टनर जरूर बनाइए।
1: दिस इज भारत FM।
2: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
0: अच्छा हम सफर्स, हमने आज देखा कि जिंदगी की अलग अलग सिचुएशंस में कैसे आंसू जाने अनजाने आंखों को नम कर ही जाते हैं, मगर मुझको तो लगता है कि सबसे ज्यादा गहरे वाले दुख से भरे हुए या फिर प्यार में बुरी तरह घायल हुए दिल कुछ ऐसे भी होते हैं जो आंसू बहाकर नहीं रोते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो कि चेहरे पर स्माइल रखते हैं मगर अंदर ही अंदर आंसुओं का सैलाब समेटे हुए रहते हैं। किसी शायर ने कहा है ना, बहुत चाहा उसको जिसे हम पा न सके, बहुत चाहा उसको जिसे हम पा न सके, ख्यालों में किसी और को ला न सके। उसको देख के आंसू तो पहुंच लिए लेकिन किसी और को देख के मुस्कुरा न सके।

वेलकम बैक। आपकी कम्यूट के सफर की सफरिंग को थोड़ा कम करने के लिए आपके साथ हूं मैं आरजे डी, और आप सुन रहे हैं भारत एफएम पर आपका और मेरा फेवरेट शो हमसफर। तो हमसफर, जब भी हम किसी को रोते देखें तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि हम उनको कंफर्ट करें या फिर उनके आंसू पोंछ दें। इसी इंस्टिंक्ट से जुड़ी हुई एक बहुत ही स्वीट कम्यूट स्टोरी है जो मैं आपको आज सुनाना चाहती हूँ। ये हमको भेजी है हमसफर रितु ने। रितु कहती है कि एक दिन वर्क फ्रॉम होम खत्म करके वो शाम को अपने लोकल पार्क में वॉक कर रही थी। इतने में ही उनको बेंच पर बैठी हुई एक औरत दिखी जो कि अपने फोन पर कुछ मैसेजेस पढ़कर रो रही थी। रितु को समझ नहीं आया कि वो क्या करें, क्योंकि इंसानियत के नाते वो इमीडिएटली उनको जाकर कंफर्ट करना चाह रही थी, मगर वो जाकर बस उनके पास बेंच पर बैठ गई और कुछ देर तो उनको कुछ नहीं बोला। जब उस औरत का रोना कुछ थम गया तो रितु उनके और पास जाकर बैठ गई, उनका हाथ थामा और उनको प्यार से बोला कि दुख की घड़ियों में कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना। उस औरत ने इमीडिएटली रितु को गले लगा लिया। उस एपिसोड के बाद वो औरत रितु की बहुत ही करीबी दोस्त बन गई और आज तक भी ये दोनों अपनी जिंदगी के सब दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। What a beautiful and touching story, रितु। Thank you so much for sharing.

0: The audiovisual programs on Bharat FM for this month brought to you by Sanjana. Man ki baat ho ya finance ki, Sanjana has it all under control. Bharat FM ki jaan hai wo, Bharat FM ki shaan hai wo. Gaana, khana, bolna, bajana, milna, milana, sunna, sunana. Leke aati hai trivia ka khazana. That, my listeners, is Sanjana. For more information, please contact 513-488-5070 aur humse zara batiyana.
1: Welcome back. मैं हूं आपकी आरजे डी और आप सुन रहे हैं भारत एफएम। मेरा काम है आपकी स्ट्रेसफुल वर्क कम्यूट को रिलैक्सिंग बनाना और आपका काम है मेरे हम सफर बनकर मेरे साथ ड्राइव करना। और हाँ, अपने गानों की फरमाइशें और कम्यूट की कहानियां मुझे जरूर भेजते रहिए। आपको तो पता ही है कि मैं हर एपिसोड में एक रिक्वेस्ट जरूर प्ले करती हूँ। तो आज की रिक्वेस्ट हमको भेजी है हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और म्यूजिक की नॉलेज से भरे हुए हमसफर सुधीर जी ने, जो सुनना चाह रहे हैं हमारी आज की टॉपिक से ही रिलेटेड एक बेहद खूबसूरत गीत। सुधीर जी, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग रिक्वेस्ट। आपकी रिक्वेस्ट मेरे सर आंखों पर। एंजॉय।

आज के इस आंसुओं के रास्ते से सुकून देने वाले सफर पर मुझे तो बहुत मजा आया, मगर आपका और मेरा आज का साथ बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक पर खूब सारी गपशप करेंगे। बस आप अपने पसंदीदा गानों की फरमाइशें और कम्यूट स्टोरीज मुझे जरूर भेजते रहिए info@bharatfm.com पर, या फिर मुझे टेक्स्ट कीजिए 5134885070 पर। मैं आज का शो एंड कर रही हूँ हमेशा की तरह अपनी एक पर्सनल फेवरेट ऑफरिंग से। ये गजल जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये तो बिल्कुल क्लासिक है और हमारे आज के इस टॉपिक के न्यूआंसेस को बखूबी कैप्चर भी करती है। आई होप यू विल एंजॉय इट एज मच एज आई डू। मैं हूं आपकी अपनी आरजेडी और आज के लिए गुड बाय। कभी कभी आंखों में बंद उन आंसुओं को बहने दीजिए एंड ड्राइव वेरी केयरफुली।

0: नमस्ते और आदाब। भारत एफएम के इस बेहद खास प्रोग्राम फरमाइश में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। मैं हूं आपका हमसफर अमिताभ रतूरी और आज का हमारा ये प्रोग्राम एक ऐसे लफ्ज के इर्द गिर्द बुना गया है जो छोटा तो बहुत है लेकिन इसकी गहराई नापना नामुमकिन है। ये लफ्ज है तू। तू कभी खुदा की बंदगी है और कभी महबूब की इबादत, कभी खुद की परछाई है तो कभी पूरी इंसानियत का आईना। आज हम आपको तू के उन चुनिंदा नगमों से महफिल सजाएंगे जिन्होंने दशकों से हमारे जज्बातों को आवाज़ दी है। और आवाज़ को और बुलंद करने के लिए हैं मेरे साथ टोरंटो से मोहन अत्रिया साहब। मोहन, वेलकम टू द प्रोग्राम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम।
1: आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अमिताभ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन। मच ऑब्लाइज्ड, एंड वार्म हेलो टू ऑल योर लिसनर्स। इट्स वेरी गुड टू कम बैक, एंड आई हैव बीन extremely busy with a lot of other things that, you know, a lot of changes in my life, so have had to do a lot of things to sort of prepare for that, and so I had deprioritized this, but not out of choice, but out of necessity. But I'm very, very glad to be back, and the first song was suggested by my good friend चंपा भारद्वाज फ्रॉम मुंबई। यस अमिताभ।
0: नहीं, मैं कह रहा था कि चंपा जो है रेगुलरली प्रोग्राम सुनती हैं बड़े, और यू नो एवरी टाइम शी सेंड्स अ सॉन्ग आई एम लाइक आई हैव टू प्ले दिस। तो
1: या शी हैज दिस फैंटास्टिक एबिलिटी टू गेट इनटू द थीम। You know, it's not that simple and straightforward, because see, I've interacted with her one-on-one, and hum log thoda research karte hain, you know, I don't know hum log, but I do. Main thoda sa research karta hun, internet pe jata hun aur dekhta hun ki kaun sa gana bajaye, phir chunta hun, phir sunta hun, phir koi theme man mein rakhta hun, lekin Champa jo hai usko ek theme bata do to wo 10 minute mein you know 15 gaane nikalegi. Or not just the songs, there are many people who are very, very knowledgeable, and you know unko aap keh do ki tu se shuru hona hai to 15 song 20 songs aap wo gina denge aapko, lekin
0: सुधीर मटानी जैसे और मन्नन रावल और चंदन, इतनी सारी फरमाइशें हैं आज की क्या बताया जाए।
1: या ऑल दीस पीपल can list the songs, but if you tell Champa or if you tell Sudhir saab ki ye lekin aisa hona chahiye, is theme mein fit hona chahiye, is kahani ke sath jo main soch raha hu uske liye ek song suggest kare, to these are two people I can completely rely on for that, and I'm very glad that Sudhir saab has requested some songs, and my apologies to him for being away from the show for a long time, but this has been good. So it was a great opening number, Amitabh. So number two mein kya rakha hai aapne?
0: To Mohan, pehli sequence jo hai songs ka, 7-8 gaanon ka, wo hai Wafa aur Intezaar ka theme, loyalty and longingness ka theme, aur ये फरमाइश अनीता की आई थी, तो अब देखिए क्या है कि ऑब्लिगेशन सा बन जाता है इतने सालों के बाद कि तो ये गीत नहीं, अब डॉग हाउस तो है नहीं अब हमारे घर में, तो तो फिल्म थी मसान, गायक है स्वानंद किरकिरे, म्यूजिक इंडियन ओशन का है, और लिरिक्स जो है वो वरुण ग्रोवर के थे। वरुण ग्रोवर बाय द वे, ये वही वरुण ग्रोवर हैं जो कॉमेडी भी करते हैं, और ये काफ़ी अच्छी, अभी कैलिफोर्निया में उनको देखा हमने, काफ़ी मज़ेदार कॉमेडी करते हैं, पर ये गाना कॉमेडी में तो नहीं है, काफ़ी सीरियस, काफ़ी सीरियस गीत है। चलिए एंजॉय,
1: चलिए, थैंक यू।

0: अब तो हम फ्रेंड हो गए हैं ना।
1: तो दोस्तों, ये तो रहा मसान का तू किसी रेल से गुजरती है। वफा और इंतजार का थीम है और गाने तू से शुरू होने चाहिए कि राहें तन्हा हैं और दिल बेकरार है, सिर्फ तेरा ही मुझे इंतजार है। तू कहाँ है ये बता दे हम सफ़र, तू कहाँ है ये बता दे हम सफ़र, मेरी हर सांस पे तुझ पे निसार है। तो मोहन, बहुत ही कड़क सा गीत है अगला वाला।
2: हाँ, कड़क सा गीत है, बट अ सॉन्ग जिसका जो पेथोस है ना कि आई डोंट नो वेयर यू आर, प्लीज शो योरसेल्फ, ये जो फीलिंग है, ये जज्बात जो है वो बहुत एस डी बर्मन का जो म्यूजिक है इस गाने में, दैट हैज लेंट दैट पेथोस टू दिस सॉन्ग। एंड हसरत जयपुरी के बोल obviously of very very high quality, and Rafi saab ka gana hai, and this was a fantastic movie, Amitabh. If you remember, Tere Ghar Ke Saamne had Devanand and Nutan. I've seen this movie many times.
1: Excellent movie. Yeah.
2: Excellent film. Yeah. You know, in all respects, both light as well as, you know, the depths of romance. बहुत अच्छा पिक्चर था, एंड रफी साहब एंड एस डी बर्मन एंड हसरत जयपुरी कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ फैंटास्टिक नंबर इन तू कहां ये बता। लेट्स लिसन।
1: मोहन, ये सुधीर मटानी की फरमाइश थी।
2: ओ मैं बता दूंगा एट द एंड।
1: ओके, सॉरी,
2: नो, आई
1: Let's continue.
2: No, I'll

0: दोस्तों ये है भारत FM, बजेगा भारत, झूमेगा भारत। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फरमाइश। मैं हूं आपका होस्ट अमिताभ रतूरी और मेरे साथ हैं टोरंटो से मोहन अत्रिया साहब। मोहन, दिस वाज अ लवली नंबर।
1: इट वाज अ ब्यूटीफुल नंबर सजेस्टेड बाय सुधीर मतानी साहब एंड नो वंडर आई कुड हैव ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेड कि सुधीर साहब वुड हैव सजेस्टेड समथिंग और अ सिमिलर सॉन्ग लाइक दिस। One of the great songs of yesteryear, for sure, Amitabh. And I think that we are moving exactly 50 years ahead with the next song. Is that right?
0: Yeah, because you are bringing Pritam to the table.
1: You know, Pritam is something else. I mean, like, as a composer, I have always found him to be of very superior quality. I mean, I would go as far as to say that he is the modern Naushad, you know. And he has this sense of music that is extremely sophisticated and extremely nice. And, you know, with Kausar Munir involved in the song and Mohit Chauhan doing the honors for this song from Dhoom 3, you know, and you would think that a song that is picturized on Aamir Khan and Katrina Kaif, you would wonder ki ye kaise ho sakta hai, but then you suddenly realize that Aamir Khan has produced some fantastic hit numbers with some really good looking women, including if you remember in Rangila with what's her name?
0: Urmila Matondkar.
1: Urmila in Rangila and Katrina Kaif in this particular song. It's a very, very beautiful number. And let's listen to Tu Hi Junoon.
0: Mohan, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस गाने को सुनने के बाद आप ये जरूर मान जाएंगे कि इश्क ही वो हद है जहाँ सब कुछ कुर्बान हो जाता है।
1: हाँ, सब कुछ कुर्बान हो जाता है, एब्सोल्युटली 100%। एंड दैट डेप्थ ऑफ फीलिंग कम्स आउट वेरी वेरी वेरी वेल इन द सॉन्ग। एंड नो वंडर बिकॉज यू नो विद प्रीतम एंड कौसर मुनीर यू कैन नॉट हैव एनीथिंग एल्स।

0: दोनों बहुत बढ़िया गाते हैं. अभी शाहिद
1: हाँ
0: शाहिद साहब तो अभी कश्मीर में है, हम लोग थे साथ में, तो उन्होंने क्या
1: अच्छा
0: महफिल सजाई. पर मैंने सोचा एक कार्निक साहब ने क्यों इसको सेलेक्ट किया. ओ फिर मुझे याद आया कि अच्छा जरूर कोई राग बेस्ड गीत है, तब कार्निक ने सेलेक्ट किया है. तो चलिए.
1: एंड ही कैन कंफर्म बाय व्हाट्सएप और समथिंग दैट दिस इज बेस्ड ऑन राग पीलू व्हिच आई रिमेंबर्ड फ्रॉम माय कॉलेज डेज एंड होपफुली आई एम राइट एंड कार्निक साहब कैन कंफर्म इफ ही विशेस.
0: चलिए
1: राइट
0: सुनते
1: एंड
0: हैं
1: चलो
0: येसुदास और हेमलता को.
1: हेमलता को.

0: तो दोस्तों, सादगी में छिपे गहरे प्यार का इजहार जो होता है वो अलग ही होता है। कभी कभी हम लोग फिक्र करते हैं काफ़ी, एंड फिक्र, अब शब्द बोल दिया है तो उसका जिक्र भी करना पड़ेगा, कि तू
1: जी
0: तू साथ है तो मंजिल की फिक्र नहीं, तू साथ है तो
1: अच्छा
0: मंजिल की फिक्र नहीं, तेरे बिना मेरी कहीं जिक्र नहीं।
1: वाह,
0: तो ऐसा ही कुछ भाव है अगले गीत में।
1: अगले गीत में। और सुना है आरजे डी जूची, आरजे डी इज व्हेन शी पिक सॉन्ग्स, शी पिक सॉन्ग्स ऑफ वेरी वेरी हाई क्वालिटी एंड कैलिबर।
0: थोड़े हटके होते
1: शी,
0: हैं,
1: हाँ हाँ
0: जरा
1: आई
0: हटके
1: या
0: जरा बचके
1: जरा
0: का गीत
1: हटके,
0: है।
1: या थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ द बीटन ट्रैक, एंड दैट इज हर स्पेशल एबिलिटी एंड स्पेशल ग्रेटनेस। बट सिंस आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, आई विल से दिस अमिताभ, इफ शी इज लिसनिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म हर वेल इन एडवांस की आई एम ट्रेवलिंग टू सिंगापुर टू जस्ट बीट हर अप। ओके, शी हैज़न्ट कॉल्ड मी
0: वेट वेट,
1: इन अ
0: हैवेंट
1: वेरी लॉन्ग टाइम।
0: आई नो, बट हैवेंट यू ऑलरेडी मेट हर? तुम आप तो मिल भी चुके हैं उनसे।
1: नहीं, बिल्कुल मिले हैं, उसके बाद हजार बार बात भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए, एंड शी
0: तो
1: ओज मी अ कॉल।
0: आप भी तो भारत FM से गायब थे 6 महीने तक, तो आप
1: हाँ
0: क्यों,
1: ये
0: यू
1: भी
0: कांट
1: बात सही है। नो
0: कंप्लेन।
1: नो आई कैन नॉट कंप्लेन, आई कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द शो, बट शी ओज मी अ कॉल, एंड इफ शी इज लिसनिंग शी बेटर कॉल मी, अदरवाइज आई डोंट माइंड स्पेंडिंग मनी टू गो एंड बीट हर अप।
0: अच्छा,
1: ओके सो
0: हियर्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट।
1: हाँ जी
0: 7 से 9 तक हमारा फरमाइश प्रोग्राम होता है, फिर 10 बजे
1: जी
0: रीब्रॉडकास्ट होता है इसी प्रोग्राम का,
1: जी
0: और
1: जी
0: 9 से 10 तक डी का प्रोग्राम होता है हम सफ़र, तो और
1: हाँ
0: दैट्स ऑलमोस्ट अ डेली स्केड्यूल। तो सब श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि अभी ट्यून इन है तो 9 बजे भी ट्यून इन रहिए, उनका प्रोग्राम सुनिए, बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम करती हैं वो।
1: बहुत मजेदार प्रोग्राम होता है उनका, करेक्ट, एब्सोल्युटली,
0: चलिए उनका गीत सुने फिर।
1: फिर एब्सोल्युटली, फिर और क्या चाहिए सर।

0: तो दोस्तों ये तो रहा मेरा साया साथ होगा फ्रॉम द मूवी मेरा साया। अगले मोड़ पर एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है कि जमीन से आसमान तक तुझे ढूंढता हूँ, जमीन से आसमान तक तुझे ढूंढता हूँ,
1: ढूंढता हूँ,
0: हर धड़कन में तेरी सदा ढूंढता हूँ।
1: अरे वाह,
0: तू छुपी है कहाँ, तू छुपी है कहाँ इन नजारों के पीछे, तू छुपी है कहाँ इन नजारों के पीछे, मैं खुद में भी अब तेरा पता ढूंढता हूँ। मोहन, यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस लवली लवली नंबर बाय आशा एंड मन्ना डे।
1: आशा एंड मन्ना डे एंड लुक एट हु क्रिएटेड द सॉन्ग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज भरत व्यासस लिरिक्स, यू नो, टॉप नॉच लिरिक्स राइटर, आई थिंक स्लाइटली अंडररेटेड इन द इंडस्ट्री, absolutely mesmerizing poetry he used to write. He also wrote a lot of non-filmy poetry, which was also of a very, very high quality. So you had Bharat Vyas and the music director of music directors, C. Ramchandra, was an absolute master of the classical genre of Bollywood songs, top class material in his songs, and both Manna De and Asha Bhosle gave their life to this song. It was a song of the nature of this song was such that it demanded a lot from the singers, and this was a hallmark of all C. Ramchandra songs anyway. Not very easy to sing. But that is probably the reason why he picked Manna De and Asha Bhosle to sing it. And boy, did they do justice to this number. Tu Chupi Hai Kahan.

0: तू चंदा मैं चांदनी, तू तरुवर मैं छाँव रे, तू बादल मैं बिजली। तो देखिए मोहन साहब, ये इगैलिटेरियन टेंडेंसी चल रही है यहाँ पे कि नहीं? देखिए कि वो बोल रहे हैं कि कभी तुम आगे हो कभी हम आगे हैं। ओके, तू बादल मैं बिजली इज क्लियरली अ स्टेटमेंट दैट आप ही, यू नो, yeah, so you know,
1: see, the lovers could be egalitarian, okay, Amitabh, lekin this song is unparalleled,
0: yeah.
1: iska koi egalitarianism nahi hai iske. Bal Kabhi Bairagi is Hindi, number one,
0: yes.
1: Okay, and secondly Jaydev's music, and each antara was different,
0: and you know, the number of times he changes the music on you. तो राकेश जी बोलते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड मिला, भाई क्यों नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया गीत बनाया,
1: अरे क्यों नहीं मिलेगा भाई, दिस शुड हैव रिसीव्ड द ऑस्कर फॉर म्यूजिक, नॉट जस्ट द फिल्म फेयर अवार्ड। आई मीन, आई डोंट नो इफ फरमाइश में आपने कभी किया हो कि एक ही गाना दो बार बजाए बैक टू बैक। इफ यू अलाउ दैट, आई डोंट माइंड लिसनिंग टू दिस सॉन्ग अगेन, सीरियस, व्हाट अ सॉन्ग
0: भाई। वो तो ठीक है, पर चांद तो एक ही बार निकलता है शाम को।
1: ये भी बात सही है। एंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज द नेक्स्ट सॉन्ग इज नॉट अ ऐसा वैसा गाना नहीं है, इट इज अ वजनदार सॉन्ग, एंड शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ सॉन्ग है, एंड if it was Shailendra, then it had to be Shankar Jaikishan, of course. And the movie was Seema. 3 years before I was born. This
0: अभी फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ये Tamilians are horrible mathematicians यार।
1: Seriously, वो पढ़ते थे ना कि कुछ भी मार्क्स लेके आओ, लेकिन
0: अच्छा चलिए 1955 मैंने गेस किया, इज दैट राइट?
1: 1955 सही है, यू नो, हम लोग ऐसे थे कि मैथ में अगर 98 मिला तो पिताजी पूछते थे कि ये दो मार्क गया कहाँ।
0: हाँ, सही बात, right?
1: So anyway, शैलेंद्र शंकर जयकिशन एंड मन्ना दे सिंगिंग राकेश शुक्ला साहब्स फरमाइश, अ सॉन्ग that is unparalleled in many respects, picturized on Balraj Sahani. Let's listen to Tu Pyar Ka Sagar Hai.

0: बड़ा ही हॉन्टिंग भजन जैसे कि राकेश जी ने बताया हमें। चलिए
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत बहुत वेरी वेरी नाइस फरमाइश राकेश साहब, थैंक यू वेरी वेरी मच। इमोर्टल सॉन्ग एंड मजा आ गया था टू टू लिसन टू इट। द नेक्स्ट सॉन्ग इज मॉडर्न एरा एंड यू नो वन ऑफ माय फेवरेट फेवरेट पीपल इन द म्यूजिक वर्ल्ड टुडे इज अरिजीत सिंह एंड दिस इज अ सॉन्ग an Ali Zafar song sung by Arijit Singh and
0: Actually, it is, or is it Ali Zafar?
1: I think that it is an Amit Trivedi song, isn't it?
0: Composed by Amit Trivedi. Composed by
1: Amit Trivedi song and written by Kausar Munir.
0: Yeah.
1: If I'm not mistaken, yeah.
0: And chaliye, okay, so let's have the people guess whether it's Arijit Singh or whether it's Ali Zafar.
1: Okay.
0: Well, let's have them guess.
1: Dekhte hain. Let's have them guess.
0: Who gets it right?
1: Let's listen to Tu Hi Hai Hawa. Whoever it is, a beautiful number, absolutely beautiful number from Dear Zindagi.

0: जाएगी।
1: यू नो मोहन, समटाइम्स आई विश आई वाज एन एक्टर इन द 1940s। क्या मजेदार मोमेंट्स होते थे उनके। इफ यू लुक एट सम ऑफ दीज ओल्ड सॉन्ग्स एंड द वे दीज गाइज मूव, यू नो,

0: भाई चंदन साहब, क्या रिक्वेस्ट की आपने, मजा आ गया इस गीत के साथ। पर या बट यू नो मोहन, तू मेरे सामने हैज अनदर ब्यूटीफुल नंबर फ्रॉम सुहागन फ्रॉम 1964।
1: करेक्ट यस यस, आई नो द नंबर दैट यू आर टॉकिंग
0: अबाउट। उसको बजाएं अभी कि बिकॉज दोनों सुधीर और शाहिद ने इसको सेलेक्ट किया, तो थोड़ा सुन लेते हैं। मदन मोहन, मदन मोहन सर। अरे आपको मदन मोहन के बारे में बताना पड़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आपके तो फेवरेट है, चलिए सुनते हैं।
1: बट आई सेड हसरत साहब का।
0: या ओके
1: ठीक है, ओके लेट्स गो।

0: तो ये तो रहे मोहम्मद रफ़ी हसरत जयपुरी के बोलों के साथ और मदन मोहन का म्यूजिक. मोहन, हाउ कैन वी गेट इट इवन बेटर देन दिस?
1: इट इज़ वेरी वेरी
0: हार्ड. सो वेरी हार्ड. पर शीला मेहता की एक लास्ट मिनट फरमाइश आई है.
1: अच्छा जी.
0: बड़ा ही मज़ेदार मराठी नंबर है.
1: अच्छा,
0: तू सप्तसुर माझे. अच्छा ये है, यू नो, सो फॉर ऑल ऑफ अस जो जो गाने नहीं सुने हैं उनको सुनना हमारे लिए एक गिफ्ट होती है. आप अभी तो ये बजाएं इसको?
1: एब्सोल्युटली, पूछने की बात.
0: चलिए ये बजाते हैं और फिर उसके बाद आपका फिनाले नंबर से कंक्लूड करते हैं.
1: करेक्ट.

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: हाँ, ऐसे नहीं बताऊंगा। तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

0: ये है भारत FM।
1: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: जी हाँ दोस्तों, बजेगा भारत, झूमेगा भारत, गाएगा भारत, गुनगुनाएगा भारत। आइए सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए आज के म्यूजिकल सफर की तरफ चलते हैं, आपको लेकर गाते गुनगुनाते शो में भारत FM पर आप इस शो को सुनते हैं। और आज हम डेलाइट सेविंग्स टाइम एंड होने के बाद पहला शो कर रहे हैं, तो 6:30 बजे इंडिया में, लेकिन US में ईस्टर्न टाइम सेम रहता है 8 PM। हम स्टार्ट करते हैं शो। चलिए, आप सभी की प्रेजेंस यहाँ पर शो में हमको पता है, पहले आपकी फरमाइश के नगमे सुनाएंगे, तारुफ कराएंगे आपका, लेकिन स्टार्ट करने के बाद आज हम आपके लिए आपके ही पसंदीदा कलाकार के बारे में शो तैयार करके लाए हैं। आप याद, अगर आपको होगा कि रविंद्र जैन साहब पर जब शो किया जा रहा था, तब उनसे एक सवाल के बारे में बात की गई थी कि आप अगर दुनिया को देखना चाहेंगे तो आप किन को देखना चाहेंगे। तो रविंद्र जैन जी कहते हैं कि मैं उनको देखना चाहूँगा जिनको भगवान की आवाज़ कहा जाता है और माना जाता है, यानी कि येसुदास साहब को वो अपने प्रत्यक्ष देखना चाहते थे, अगर उनको रोशनी मिलती आँखों को उनकी। तो आप समझिए कि जो देख नहीं सकता महसूस कर सकता था इनकी आवाज़ को, उस तरह की आवाज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। और एक से एक खूबसूरत गाने इन्होंने बॉलीवुड मूवीज़ में दिए हैं, तो हम कुछ गाने आपके लिए आज के शो में शामिल करके लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, आपकी ही फरमाइश पर मैं ये पहली पेशकश सुनाता हूँ। पहला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, वो इस तरह से लिया जा रहा है फर्स्ट सॉन्ग, कि कहा जाता है कि इस सॉन्ग को इन्होंने पहला सॉन्ग माना है, रिकॉर्ड किया गया था। फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्ड तो हुआ था किसी और फिल्म के लिए, लेकिन रिलीज़ जो फिल्म हुई थी, हिंदी मूवी पहली जिसमें इनका गाना आया था, वो था छोटी सी बात फिल्म से लिया गया। तो वो गाना मैं आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहा हूँ, तो इसका छोटा सा हिंट पहचानिए और बताइए कौन से गाने की यहाँ पर बात की जा रही है।

ये गाना आप सुनने जा रहे हैं अभिनव कुमार, विकास ढींगरा, शालिनी सिंह, प्रवीण जी और अभिजीत एंड सीमा चैटर्जी, ज्योतिका आंटी, सुप्रिया गुप्ता और अतुल त्यागी जी की फरमाइश पर।

छोटी सी बात, फिल्म का ये गीत दोस्तों आपने सुना। कुछ डिस्प्यूट सा होता था बीच में कि कौन सा गाना पहला गाना रिकॉर्ड किया या रिलीज़ हुआ था यशोदा साहब का। तो कुछ लोगों का ऐसा मत था कि जय जवान जय मकान फिल्म का गाना पहला रिकॉर्ड हुआ या पहला रिलीज़ हुआ। तो किसी एक इंटरव्यू में यशोदास जी ने इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि जय जवान जय मकान फिल्म जो थी उसकी गाने की रिकॉर्डिंग पहले हुई थी, ये बात सच है। लेकिन छोटी सी बात, फिल्म पहले रिलीज़ हुई, जिसकी वजह से पहला रिलीज़ सॉन्ग जो है हिंदी सॉन्ग जो इन्होंने गाया वो यही माना गया है। तो इसी से आज के शो की शुरुआत की है हमने। दोस्तों, यशोदास साहब की आवाज़ का साथ दिया था आशा भोसले की आवाज़ ने। बहुत ही प्यारे तरह से इस ड्यूएट को गाया गया है। और इस फिल्म में देखा गया था अमोल पालेकर के साथ विद्या सिन्हा को, और अभिजीत चटर्जी साहब कहते हैं कि उनको अमोल पालेकर के एक्सप्रेशंस इस सॉन्ग में बहुत पसंद आए। बहुत गजब का किरदार निभाया था इस फिल्म में अमोल पालेकर ने। सलिल चौधरी को बहुत मानते थे यशोदास, उन्हीं का संगीत था इस फिल्म में, उन्होंने ही इनको गाने का मौका दिया। हिंदी फिल्म में एक के बाद एक बहुत ही खूबसूरत गाने गाते रहे सलिल दा के साथ ही। तो चलिए दोस्तों, इस गाने के लिरिक्स के बारे में भी बात हो जाए। लिरिसिस्ट थे योगेश। तो आपकी प्रेजेंस इस शो में हमारे साथ रिकॉर्ड हो गई है, तो आप के तारुफ के साथ फिर मैं आगे बात करता हूँ यशोदास जी की। ब्रिजेश दीक्षित, मोनिका दीक्षित, संजीव सिंह, मधुसूदन दीक्षित, पंकज सक्सेना, दीपेश पाठक, संदीप सिंह जावा, महेंद्र दुबे, ओम प्रकाश सिंह, सुरेश सप्रा, नीतू सप्रा, अभिजीत एंड सीमा चटर्जी, ज्योतिका आंटी, शेखर अग्निहोत्री, डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री, शालिनी सिंह, रितेश अग्रवाल, डॉक्टर शेफाली श्रीवास्तव एंड अभिनव कुमार। अभिनव कुमार साहब, आपकी फरमाइश पर यह गाना था। हो सकता है आपको मिला हो मौका इस गाने को सुनने का। आई हैव सीन दैट यू हैव जस्ट कन्फर्म योर प्रेजेंस। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पहली पेशकश अच्छी लगी होगी। हमारे यूके के श्रोता जो हैं, कुछ स्ट्रगल है वहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी की वजह से, चौपी कनेक्शन था ऐसा उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ नंदिनी और शानू हमारे साथ जुड़ जाएंगे बहुत ही जल्द। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गीता आंटी मुंबई से, सुप्रिया गुप्ता लखनऊ से, अतुल त्यागी फ्रॉम गाज़ियाबाद। त्यागी साहब, आपके साथ आपकी फैमिली के लोग भी सुन रहे हैं इस शो को, तो कंफर्म कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, हमारे साथ और कुछ श्रोता जुड़े हैं, उनके नाम बीके मिश्रा साहब, राजीव सक्सेना जी, राजीव जी जलंधर से, और भारत अनुराग पांडे साहब शाहजहाँपुर से। इनका मैसेज मिला, कंफर्म कीजिए आप ट्यून्ड इन हैं इस शो में, फिर बात करते हैं आपके बारे में। और हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हैं शोभित मेहरा, राधिका मेहरा, मास्टर देवांश। दीपेश पाठक जुड़े हैं माधव पाठक और पूजा पाठक जी के साथ, लेकिन अकेले आज मैराथन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं देहरादून। उम्मीद करता हूं आपकी इस मैराथन में आपको हमारे शो की वजह से कुछ सपोर्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलता हूं अगले फरमाइशी नगमों की तरफ। यशोदास, इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1940 में, और ये एक इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं। डिवोशनल और फिल्मी सॉन्ग्स इन्होंने बहुत सारे गाए हैं। और कहते हैं इनके बारे में कि ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स
in the history of Indian music and cultural icon of Kerala. Kerala को belong करते हैं. इनसे पूछा गया कि साहब आपको हिंदी के गाने गाने में क्या दिक्कत नहीं होती थी, आप केरला में वहाँ पर रहे हैं, आपकी पालन पोषण वहाँ पर हुआ है. तो इन्होंने clarify किया कि केरला के लोग हिंदी गाने सुनते हैं, उनके करिकुलम में भी हिंदी है, तो लिख लेते थे लेकिन बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी. रफ़ी साहब के डाई हार्ट फैन थे ये हैं. तो इन्होंने रफ़ी साहब को बहुत सुना. कहते हैं कि रफ़ी साहब जैसा कोई सिंगर हुआ नहीं है आज तक, इनकी नॉलेज में ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी इतना महान सिंगर ना हुआ है ना हो सकेगा, ऐसा इन्होंने अपने इंटरव्यू में बयान दिया था. और ख़ास तौर से जब इनको कहा गया कि हिंदी फिल्म में आप गाते हैं तो क्या आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ महसूस होती थी, उन्होंने कहा कि हिंदी के सॉन्ग्स में उर्दू का बहुत यूज़ किया जाता है, तो वो उर्दू कहाँ से इन्हें जो है उसके वर्ड्स इन्होंने पकड़ने शुरू किए, वो रफ़ी साहब के सॉन्ग्स सुनते सुनते इन्होंने किया. अपने पिताजी से इन्होंने बचपन में ही म्यूज़िक की तालीम हासिल करना शुरू कर दिया था. इनके फादर एक स्टेज आर्टिस्ट और सिंगर थे, जिसकी वजह से इनको बहुत अच्छा बूस्ट मिला, बचपन से ही बहुत सारा प्रोत्साहन मिला. संगीत की दुनिया में इन्होंने कदम रख लिया था, सीखना शुरू किया बहुत शानदार तरह से, और फिर इनको मौके मिलते चले गए. आपको बताएंगे इनके बारे में कुछ और बातें, लेकिन अभी ले चलते हैं अगले गाने के तरफ. और ये गाना मैं आपको सुनवाऊँ, उससे पहले हमारे साथ कुछ और श्रोता जुड़ गए हैं. हाँ, अभी मैंने अपने एक श्रोता का नाम शायद नहीं मेंशन किया, बहुत बड़े डायहार्ड फैन हैं यशुदास साहब के. इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि हम यशुदास साहब पर शो करें. अनिल दुबे जो कि डैलस से हमारे साथ जुड़ते हैं, यूएस डैलस से, तो वो भी हमारे शो में शामिल हैं. अनिल साहब, वेलकम टू द शो एंड गुड इवनिंग टू यू. होप यू आर एंजॉयिंग दिस शो. और आपके गाने भी लाइंड अप हैं. राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से. श्रेयस पाठक, अर्चना जी और दिवीना जी के साथ जुड़े हैं हमारे शो में लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से. जैदी मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं अमरोहा से. चलिए दोस्तों, आपको अब ले चलता हूँ अगले गीत की तरफ. और अगला गीत जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आपके प्रेजेंस के हिसाब से उसको लाइनअप करूं ये कोशिश कर रहा हूं. तो अगला गाना जो है सुनवाते हैं आपको. अगला सॉन्ग चलिए, जहाँ पर खुशी का इजहार किया जा रहा है बहुत ही लाजवाब और शानदार तरह से, उस फिल्म का गाना ही आपको सुनवाता हूँ अगला. छोटा सा हिंट, पहचानिए, जवाब लिखिए. लेकिन पहले आपने जिन श्रोताओं ने सही जवाब लिखे उनके नाम हैं अतुल त्यागी, गीता सिंह जी, सुप्रिया गुप्ता. और इनके साथ साथ सही जवाब लिख भेजे थे जिन श्रोताओं ने उनके नाम, शिफाली श्रीवास्तव, शालिनी सिंह, ब्रिजेश दीक्षित, अभिनव कुमार, अभिजीत चटर्जी. आई थिंक आई मेंशनड इट. शालिनी जी ने इस गाने को बहुत पसंद किया पहले पेशकश को. तो चलिए अब आपको ले चलता हूँ इस गाने की तरफ.

चित चोर फिल्म का नगमा आप सुनने जा रहे हैं अभिजीत और सीमा चटर्जी, मधुसूदन दीक्षित, सुरेश सप्रा, नीतू सप्रा, विकास ढींगरा, शालिनी सिंह, शोभित मेहरा, राधिका मेहरा, देवांश और अतुल त्यागी साहब की फरमाइश पर। आप गाना पहचान जाएंगे और जवाब दे चुके होंगे अब तक, उम्मीद करता हूँ।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिल लग भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
3: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

चित चोर फिल्म से लिया गया ये गीत आपने सुना दोस्तों। कितना प्यारा गाना है ये, और म्यूज़िक डायरेक्शन किन का था? उन्हीं का जिनके नाम से हमने आज के शो की शुरुआत की थी, इनके तारुफ में येसुदास जी के, यानी कि रविंद्र जैन साहब का इसमें संगीत था दोस्तों। लाजवाब संगीत, और ये फिल्म डायरेक्ट की थी बासु चटर्जी ने। दोस्तों इस चटर्जी नाम से मुझे याद आया, समित चटर्जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। समित साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। हमारे साथ संजीव अरोरा, डॉली अरोरा, मास्टर अर्जुन एंड मलिका गाज़ियाबाद और देहरादून से ट्यून इन कर चुके हैं। क्या बात है, सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए कुछ और चर्चा करते हैं येसुदास साहब की, और फिर आपको सुनवाते हैं अगला फरमाइशी गीत। तो इस ऑडियो नॉट कमिंग थ्रू, कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? आई थिंक सम ऑफ द लिसनर्स आर अनेबल टू ट्यून इन। कैन यू गाइज प्लीज़ कन्फर्म दैट इफ यू आर एबल टू हियर मी एंड द म्यूज़िक विदाउट एनी इश्यूज़। अगर किसी श्रोता को अगर कुछ इसमें दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, तो प्लीज़ एक बार ब्राउज़र को स्वाइप अप करके अपने डिवाइस से या क्लिक करके रीस्टार्ट कर लीजिए, और लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको क्लिक करके दोबारा से लॉन्च कर लीजिए ब्राउज़र, देन इट विल बी बैक विद ऑल द फीचर्स, यू विल बी एबल टू हियर इट क्लियरली। सो श्रेश भाई, थैंक यू फॉर कन्फर्मिंग दैट यू आर एबल टू हियर मी। ओके, डॉली अरोरा, संजीव साहब, इन सभी ने कन्फर्म किया कि वो सुन सकते हैं हमको। तो आपको सबसे पहले तो मैं सही जवाबों के साथ शुरू करता हूँ बातचीत। तो शालिनी सिंह, अभिनव कुमार, शिफाली श्रीवास्तव, सुरेश सप्रा, ब्रिजेश दीक्षित, अभिजीत चटर्जी, इन सभी ने सही जवाब लिख भेजे हैं। इस बीच हमारे साथ पवन कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार पवन साहब, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू। चलिए दोस्तों, इनके साथ साथ सही जवाब लिखने वालों के नाम हैं राहुल वाजपेयी, जिन्होंने कंफर्म किया कि दे कैन हियर द म्यूज़िक एंड माय वॉइस क्लियरली, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग बैक। डॉली अरोरा, आपने भी कंफर्म किया, थैंक्स सो मच। अतुल त्यागी साहब ने कंफर्म किया और सही जवाब भी लिख भेजा। सुप्रिया गुप्ता जी ने सही जवाब लिख भेजा, और आपके साथ साथ राधिका मेहरा और शोभित मेहरा साहब ने भी कंफर्म किया, गाने का सही जवाब लिख भेजा। राजीव सक्सेना जलंधर से हमारे साथ जुड़े हैं, और ऑफ टॉपिक गाना की इन्होंने फरमाइश भेजी है। तो राजीव साहब, बिल्कुल कोशिश करूँगा आपके गाने की, क्योंकि आपकी फरमाइश का मैं गाना शायद पहली या दूसरी बार इस शो में रिसीव किया है मैंने, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्ले योर सॉन्ग। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आपको लेकर अगले एक बहुत ही शानदार सॉन्ग की तरफ, और इसकी फरमाइश को एक बार कंफर्म करता हूँ। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे श्रोता हैं जो सुनना चाहते हैं इस गाने को, तो वो शामिल हैं, ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। तो येसुदास साहब के बारे में कुछ और बात हो जाए, तो इन्होंने तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाए हैं, तो जिसमें कि मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, तुलु, हिंदी, उड़िया, बंगाली, मराठी, एज वेल एज अरेबिक, इंग्लिश में भी इन्होंने गाए हैं, लैटिन एंड रशियन आल्सो। सो इनका करियर स्पैन किया करता है 6 decades, यानी कि 6 दशकों से ये गाते आ रहे हैं, और अवार्ड्स इनको इतने
इतने एक से एक शानदार मिल चुके हैं कि एक वो

महसूस कर चुके होंगे अब तक। इसी फहरिस्त में एक जो अगला गाना लेकर आए हम बहुत ही शानदार है, वो इसको और भी अगले स्टेप पर लेके जाएगा। सो आप तैयार हो जाइए, इसके हिंट को सुनिए और बताइए कौन से गाने की फरमाइश यहाँ पर की जा रही है।

डॉक्टर शिफाली श्रीवास्तव, ब्रिजेश दीक्षित, मोनिका दीक्षित, मधुसूदन दीक्षित, डॉली अरोरा, संजीव अरोरा, मास्टर अर्जुन एंड मलिका, शेखर अग्निहोत्री, डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री, ऋतुराज सिंह, सुरेश सप्रा, नीतू सप्रा, विकास ढींगरा, शालिनी सिंह, अतुल त्यागी और अनिल दुबे साहब की फरमाइश पर आप ये बहुत ही शानदार नगमा सुनने जा रहे हैं येशुदास साहब की आवाज़ में।

साजन बिना सुहागन 1978 की रिलीज़ हुई ये फिल्म, जिसका कि आपने ये गाना सुना येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ इसमें पद्मिनी कोल्हापुरे के लिए यूज़ की गई थी, जो कि एक बहुत ही छोटी बच्ची दिखाई गई हैं। और राजेंद्र कुमार साहब, जिनके पीछे येसुदास साहब की आवाज़ इसमें मिली है, बहुत ही शानदार। अमित खन्ना के इसमें गीत के बोल लिखे हुए थे और उषा खन्ना ने इसमें संगीत दिया था। आप ये बताइए कि क्या उषा और अमित खन्ना रिलेटेड हैं किसी भी तरह से? आई एम नॉट रियली श्योर, आई जस्ट सॉ दीज नेम्स, एक लिरिसिस्ट और एक म्यूज़िक डायरेक्टर, तो अगर कुछ इनमें कोई संबंध है तो बताएं। चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद कुछ और बातचीत की जाए। आपके सही जवाबों की बात करते हैं तो पवन कुमार सिंह साहब के साथ साथ शालिनी सिंह, शिफाली श्रीवास्तव, सुरेश सप्रा, मधुसूदन दीक्षित, सभी ने सही जवाब लिखे और हमें भेजे। शालिनी सिंह इस गाने को बहुत पसंद करती हैं, और अगर इसमें कुछ करेक्शन था, मैंने जैसे कि लिरिक्स बताए कि जिनके थे इसमें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, कोई अगर करेक्शन है तो बताइएगा। लगता है अतुल त्यागी साहब ने कुछ यहाँ पर, हाँ, तो आपने म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम भेजा है, एब्सोल्युटली उषा खन्ना का ही म्यूज़िक था इस फिल्म में, क्या बात है। और सही जवाब लिख भेजा है राहुल वाजपेयी साहब ने, और राधिका मेहरा ने महाराष्ट्र औरंगाबाद से, डॉली अरोरा, संजीव अरोरा गाज़ियाबाद, और गीता सिंह जी ने सही जवाब लिख भेजा है। गीता जी, आपका जो सॉन्ग है फेवरेट सॉन्ग, वो हमें मिल गया है और हम उसको लाइनअप करके रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मूड के हिसाब से मैं उस सॉन्ग को शामिल करूँगा। जे एस शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो ये वापस कालाहांडी उड़ीसा पहुँच चुके हैं, उनको बहुत पसंद आया ये सॉन्ग। शुक्ला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में, और बहुत बहुत मुबारक हैं आपको। तो लगता है बिटिया की शादी आपने तय की है, तो आपको और आपके परिवार को और मधुसूदन साहब के परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। कहते हैं जे एस शुक्ला जी, कहते हैं अति सुंदर जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, तो क्या बात है। इस गाने को बहुत पसंद किया है लोगों ने, आप सभी के कमेंट्स बहुत अच्छे कमेंट्स हमें, बहुत प्यारे कमेंट्स मिले हैं, तो इससे पता लगता है आपको बहुत पसंद है ये गाना। चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूँ अगले नगमों की तरफ। अब अगला गाना आपको जो हम सुनवाने जा रहे हैं, उसकी फरमाइश मैं एक बार कंफर्म करता हूँ कि आप शो में शामिल हैं ऑलरेडी और हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं, तो इस बेसिस पर मैं अगला गाना जो लेकर आया हूँ आपके लिए वो सुनवाने जा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी और बात की जाए तो ये है कि येसुदास साहब के जो पिताश्री, उन्होंने इनको बहुत प्रोत्साहन दिया, उन्होंने इतना तक कहा कि तुम्हें अगर अपने एकेडमिक्स में फोकस करने से, अगर म्यूज़िक पे ध्यान देने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो तुम प्राइमरी फोकस संगीत सीखने में ही लगाओ, फोकस उसी पर करो, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह अपने आप को म्यूज़िक में समर्पित कर दो। तो ऐसा प्रोत्साहन मिला, ऐसा सपोर्ट मिला इनको, और फिर इन्होंने
पीछे मुड़ के नहीं देखा, पूरी तरह जब फोकस किया तो इनको छोटी सी उम्र में स्टेज पर गाने का मौका दिया गया। लेकिन वो तो था ही, इनकी प्रतिभा को देखकर स्कूल में इनको राष्ट्र गान गाने का मौका दिया जाता था। तो एवरी डे इन द असेंबली ही यूज़ टू सिंग दैट राष्ट्र गान। तो ये भी एक बहुत ही प्यारी बात है इनके बारे में। फिर इसके बाद इन्होंने स्टेज पर गाना शुरू किया और लोग पसंद करते ही चले गए। इनकी आवाज़ का जो जादू है वो पहली बार सुनने पर ही पता लग जाता है, लोगों को तो पूरी तरह से मुरीद हो जाते हैं इनकी आवाज़ के, इनकी गायकी से प्रभावित हो जाते हैं। इन्होंने कर्नाटिक शैली से शुरुआत की थी क्लासिकल म्यूज़िक सीखने की, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने हिंदी क्लासिकल पे बहुत ध्यान दिया, उसको भी महारत हासिल कर ली उस पर। और फिर आप देखिए एक से एक म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हैं हिंदी फिल्मों के, उन्होंने इनको प्रेफर किया, एक बार इनके साथ काम कर लिया या नहीं भी किया, लोगों की बहुत इच्छा होती थी कि इनके साथ हम काम करें, ये हमारे लिए गाएं। तो कुछ बातें और शेयर करूंगा, लेकिन आपको सुनवाता हूं एक बहुत ही खूबसूरत गाना, तो उसका हिंट दे रहा हूं आपको, बताइए कि ये कौन से गाने की बात की जा रही है यहां पर।

विनय रस्तोगी, ऋतुराज सिंह, समित चटर्जी, सुरेश सप्रा, शालिनी सिंह, ब्रिजेश दीक्षित और अतुल त्यागी साहब की फरमाइश पर आप ये बहुत ही खूबसूरत गीत सुनने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा।

दोस्तों, ये बहुत ही शानदार तरह से गाया हुआ गाना जिस फिल्म में गाया गया था इनके द्वारा, उस फिल्म का नाम टूटे खिलौने। और इसके बोल गाने के जो थे वो थे कैफ़ी आज़मी साहब के, बप्पी लहरी साहब का इसमें संगीत था। क्या शानदार गाना बना, क्या खूबसूरती से गाया येशुदास साहब ने। इस फिल्म में, जिस फिल्म में से ये गाना लिया गया है, उसमें शबाना आज़मी और शेखर कपूर को देखा गया था। शेखर कपूर जो कि खुद एक बहुत ही शानदार डायरेक्टर अब अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, उस समय इन्होंने एक्ट किया था इस फिल्म में। ये थी कुछ बातें इस गाने के बारे में। बहुत ही शानदार फरमाइश, और आप सभी के जवाब हमें मिले गीता सिंह जी मुंबई से, अतुल त्यागी जी गाज़ियाबाद से, सुप्रिया गुप्ता लखनऊ से सही जवाब देते हैं, इनके साथ साथ डॉली अरोरा, संजीव अरोरा, राहुल वाजपेयी, राधिका मेहरा, श्रेष पाठक जी। और सही जवाब देने वालों की लिस्ट में शामिल हैं सुरेश सप्रा जी, पवन कुमार सिंह साहब, शालिनी सिंह जी, अभिनव कुमार साहब, शिफाली श्रीवास्तव जी, जैदी मैम, मधुसूदन दीक्षित साहब। शालिनी सिंह जी कहती हैं अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय येशुदास जी। ब्रिजेश दीक्षित साहब सही जवाब देते हैं। और बाकी बातें आपके साथ थोड़ी देर बात करता हूँ, लेकिन बात आई है बप्पी साहब की। तो बप्पी दा का ये मानना था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनके म्यूज़िक को एक अच्छी तरह से जो प्रेजेंट करने वाले सिंगर्स थे उनमें दो नाम शामिल हैं, एक तो किशोर दा जो कि उनके खुद के मामा थे, और एक येशुदास जी। वो ये कहते थे कि मेरे म्यूज़िक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं जब भी ये गाते हैं गाने। तो येशुदास साहब की इस खासियत को आपने नोटिस किया होगा, बप्पी दा के संगीत में जब इन्होंने गाया तो कितना बढ़िया बन पड़ा था ये गाना। ये थी बात बप्पी दा के साथ काम किए जाने की इनकी। दोस्तों, कुछ बातें और। हालांकि ये चर्च जाते थे क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, तो जाते थे बिनागा। वहाँ पर साल में या एक फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये हमेशा चर्च में जाके परफॉर्म करते हैं, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। कोई भी कभी भी नागा नहीं होता है, ये हमेशा बहुत ही सिंपल किस्म की पर्सनालिटी है इनकी, बहुत ही सादगी से रहते हैं, जीते हैं, और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हैं। और नॉलेज का जवाब नहीं, इनको डॉक्टरी भी दी गई है म्यूज़िक के क्षेत्र में, इन्होंने डॉक्टरी हासिल की है, इनको ऑनर करते हुए डॉक्टरी दी गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बहुत खुश होते हैं इनसे मिलकर, इनके गाने सुनकर इनके फ़ैन हो जाते हैं और चाहते हैं कि इनसे कभी मुलाकातें हों तो उनसे बातचीत करते हैं। एक से एक किस्से हैं इनके बारे में, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये बताऊं कि इन्होंने गाने जो अपने रिकॉर्ड कराए वो रविंद्र जैन साहब के साथ साथ बप्पी लहरी, खयाम, राजकमल और सरल चौधरी के संगीत में कराए हैं। राजकमल साहब के साथ इनके बहुत सारे हिट सॉन्ग्स हुए हैं। तो यही नहीं, बात जब देश की आ जाती है तो ये सब कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी इन्होंने काम किया। चाइना के साथ वॉर में इंडिया जब शामिल हुआ तब इन्होंने स्टूडियो से निकलकर बाहर परफॉर्मेंसेस दी और चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा किया कि देश को ये पैसा पहुंचाया जाए, कंट्रीब्यूट किया जाए, ऐसे समय में जबकि इस टफ़ सिचुएशन से कंट्री गुजर रहा था, तब इन्होंने काफ़ी कुछ पैसा जो है चैरिटी में दिया परफॉर्म करते हुए। तो ये बात इनके बारे में बहुत शानदार बात है। और
इन्होंने यही नहीं, एक इन्होंने स्कूल ऑफ म्यूज़िक भी एस्टेब्लिश किया 1975 में, तरंगनीसरी नाम से स्कूल ऑफ म्यूज़िक इन्होंने एस्टेब्लिश किया टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ म्यूज़िक। और ये गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इसको रिकग्नाइज भी किया है, एंड इट इज़ मैनेज बाई सोसाइटी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर त्रावणकोर कोचीन लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज एक्ट 12 ऑफ 1955, सिचुएटेड इन समवेयर इन तिरुवनंतपुरम। सो आई डोंट वॉन्ट टू प्रोनाउंस दोज नेम्स रॉन्ग, सो आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट। सो प्लेस है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पर ये है। दोस्तों कुछ और बातें बताता हूँ, इनको बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं, 50,000 गाने इन्होंने गाए हैं, एंड ही हैज़ वन स्कोर्स ऑफ एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कवेटेड पद्मश्री इनको 1975 में मिला, 2002 में पद्म भूषण मिला, और 2017 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यही नहीं, 8 बार नेशनल अवार्ड्स फॉर बेस्ट प्ले सिंगर भी इनको दिया गया। इतनी बार अवार्ड्स मिले तब जाके इन्होंने कहा कि आप मुझे अवार्ड्स के लिए कंसिडर करना बंद कीजिए, और यंगर जनरेशन के जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उनको कंसिडर कीजिए। तो चलिए, ये बातें थी, कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता था येशुदास साहब के बारे में। और ये एक लिविंग लेजेंड हैं साहब। सो इन्होंने एक मीटिंग भी की थी कुछ टाइम पहले, प्रधानमंत्री पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं उनके साथ मुलाकात की, उनके सम्मान में उनको शॉल दिया और गिफ्ट दिया था इन्होंने, तो ये मुझे याद है, मैंने देखा था। तो चलिए दोस्तों, कुछ और बातें आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी तो आपकी अगले फरमाइशी नगमे की बात करता हूँ। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद पाल सिंह फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड मनोज कौशिक साहब। आप लोकेशन बताएं, अगर करेक्शन है तो वो भी बताएं मुझे, अरविंद साहब के बारे में जो याद है बहुत पहले अगर मेंशन किया गया होगा तो न्यू दिल्ली। कौशिक साहब की लोकेशन का मुझे आइडिया नहीं है, प्लीज़ डू शेयर विद मी द लोकेशन एज पॉसिबल। तो अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसको भी मैं पहले आपको हिंट देकर सुनाता हूँ। और बाय द वे, श्रेष भाई को ये हिंट जो दिया था मैंने, वो बहुत पसंद आया था पिछले गाने का, थैंक यू श्रेष भाई, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक डिट। ऑल्दो मेरे पास लिरिक्स कई बार अवेलेबल नहीं होते हैं बिकॉज आई हैव टू डू मल्टीटास्किंग, सो आई डोंट हैव ऑल द लिरिक्स, सो आई हैड टू सिंग वट एवर आई कुड रिमेंबर, आई मीन वट एवर आई कुड रिकॉल। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक्ड, स्टिल यू लाइक डिट। चलिए दोस्तों, आपको ले चलूँ अगले फरमाइशी नगमे की तरफ। तो अगला गाना जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, उसका हिंट इस तरह से है,

0: शिफाली श्रीवास्तव, ब्रिजेश दीक्षित, मोनिका दीक्षित, शेखर अग्निहोत्री, डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री, सुरेश सप्रा, नीतू सप्रा, विकास ढींगरा, शालिनी सिंह और अनिल दुबे साहब की फरमाइश पर आप ये बहुत ही फेमस, बहुत ही खूबसूरत गीत सुनने जा रहे हैं। अब
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड।

0: रविंद्र जैन का संगीत बद किए हुए ये गाना था दोस्तों। आप इसको महसूस कर सकेंगे कितना खूबसूरत संगीत रविंद्र जैन का था, और जिनको कि ये पता था कि यशुदास साहब की आवाज़ को कैसे पिरोना है खूबसूरत गाने में, उनकी आवाज़ को। ये खूबी रविंद्र जैन साहब की, जब यशुदास साहब के साथ मिल जाती थी तो लाजवाब गाने बनते थे। और रविंद्र जैन भी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। जब उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया था तो वो एक यादगार सा हो गया था उनके लिए, हमेशा उस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। और उन्होंने ही यशुदास साहब को रफ़ी साहब के साथ गाने का मौका दिया था, ये मुझे याद है। एक इंटरव्यू में मैंने ये बात सुनी थी। तो यशुदास साहब डाई हार्ट फैन रफ़ी साहब के रहे हैं, और इन्होंने बस एक ही सॉन्ग में रफ़ी साहब के साथ काम किया, और वही था वो सॉन्ग जिसकी मैंने आपको बात बताई, उसके पहले और उसके बाद कभी नहीं। और ये भी कहते हैं कि रफ़ी साहब जब बोलते थे तो बहुत हल्के आवाज़ में बोलते थे, बहुत सॉफ्टली बोला करते थे रफ़ी साहब। और उनसे कई बार लोग पूछते थे, सर आपने क्या कहा, दोबारा मतलब बोलने के लिए कहते थे कि मतलब कि सुन नहीं सके होंगे उनकी बात को। तो रफ़ी साहब बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, उनकी बात को एक बार में कई लोग नहीं भी समझ पाते थे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जब वो गाने पर आते थे, अगर उनको गाने दीजिए तो क्या लाजवाब आवाज़ निखर के आती थी। जितना हाई पिच में गाते थे वो रफ़ी साहब, उतनी ही आवाज़ मीठी हो जाती थी। तो उनसे इंस्पायर्ड थे यशुदास जी। मैंने इनकी एक कॉन्सर्ट में देखा, इन्होंने अटेम्प्ट किया था रफ़ी साहब के उस गाने को जिसको गाते हुए रफ़ी साहब की हलक से खून आ गया था, ऐसा कहा जाता है। ओ दुनिया के रखवाले, काफ़ी हाई पिच पे रफ़ी साहब ने गाया था वो। ख़त्म करते करते गाने को उनका जो वोकल कॉर्ड है वो हर्ट होने लगा था, इस हद तक उस गाने को हाई पिच पर ले गए थे वो। तो यशुदास साहब ने भी उस गाने को गाया है। तो आप जानिए कि जो इतनी मधुर आवाज़ वाले हैं वो चाहते हैं कि रफ़ी साहब ने जो पैमाने सेट कर दिए हैं, जो बार उन्होंने रेस करके छोड़ी है, बहुत सारे सिंगर्स चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँच सकें, कुछ कोशिश करें तो इम्प्रूव हो जाती है उनकी सिंगिंग। आपको मौका लगे ज़रूर इस बात को देखिएगा, इन्होंने YouTube में वीडियो भी डाला है यशुदास साहब ने, ओ दुनिया के रखवाले। और इन्होंने ही नहीं, इस गाने को मैं बताऊंगा आपको तो शायद आपको भी उतना ही अचरज होगा जितना मुझे हुआ था, कि इस ही गाने को जगजीत सिंह साहब ने परफॉर्म किया था एक बार स्टेज पर, जब वो उतना इस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे, कॉलेज के दिनों में उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। तो दुनिया के रखवाले उन्होंने गाना गाया था जगजीत साहब ने भी, तो उनको भी ऑडियंसेस से बहुत सारे एकोलेट्स मिले। उन दिनों में उनके टाइम में तो सिक्के चला करते थे, तो वो कह रहे थे कि इतने इतने पैसे इकट्ठा हो गए थे लोगों ने जो पैसे बरसाए मतलब उनके गाने पे। तो ऐसे ऐसे दिग्गज सिंगर्स भी रफ़ी साहब के गानों को गाना पसंद करते हैं। तो बस ये एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो यशुदास साहब ने भी वो गाया गाना। चलिए आपको ले चलता हूँ, पहले तो आपके जवाबों के बारे में बात करूँ, सही जवाब लिख भेजने वालों के, और फिर करता हूँ अगले गाने की तैयारी। इस बीच हमारे साथ विनोद रोहिला साहब जुड़ चुके हैं गाज़ियाबाद से, अमिताभ शर्मा और प्रेमा शर्मा जी रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सही जवाबों को तो मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, लेकिन आपको पहले भारत एफएम की तरफ से एक छोटा सा संदेश पहुँचाना चाहूँगा।
1: दिस इज भारत एफएम,
2: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।

0: ये है भारत FM।
1: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: जी हाँ दोस्तों, बजेगा भारत, झूमेगा भारत, गाएगा भारत, गुनगुनाएगा भारत। आइए दोस्तों, आपको फिर से ले चलता हूँ, कुछ और नगमे सुनवाता हूँ यशुदास साहब के गाए हुए। लेकिन उससे पहले सही जवाबों के बारे में बातचीत की जाए। तो पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपके सामने लेकर आऊँ, और वो ये है कि अतुल त्यागी साहब अपनी फैमिली के साथ शो में शामिल हैं तो कहते हैं कि मेरी मम्मी सुमन जी ने मेरे से पहले इस गाने को पहचाना, गुरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। क्या बात है। लास्ट टाइम आप जुड़े थे तो वो योगा कर रही थी, लेकिन उनका ध्यान गानों पर था, आप बता रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो हमारे शो में जुड़ती हैं। उनको मेरा नमस्कार पहुँचे। सुमन आंटी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन द शो वाइल यू आर बिजी विद योर योगा एंड अदर एक्टिविटीज़। आई अप्रिशिएट इट। आपके साथ साथ विनोद रोहेला साहब ज्वाइन कर चुके हैं, कह रहे हैं आई लव दिस सॉन्ग, इन्हें भी बहुत अच्छा लगा ये गाना। और सही जवाब जिन्होंने हमें लिख भेजे उनके नाम हैं डॉक्टर शेफाली श्रीवास्तव, पवन कुमार सिंह जी, शालिनी सिंह, सुरेश सप्रा, मधुसूदन दीक्षित, पंकज सक्सेना जी। पंकज सक्सेना साहब बरेली से हमारे साथ शामिल हुए हैं शो में। कैसे हैं पंकज भाई आप? उम्मीद करता हूँ आपकी सुबह बहुत संगीतमयी बनती जा रही होगी यशुदास साहब के गानों के वजह से। जैदी मैम ने सही जवाब लिख भेजा, अमरोहा से ज्वाइन करती हैं, क्या बात है। और शिफाली जी ने हिंट को पसंद किया, थैंक यू। और इसके अलावा सही जवाब लिखकर भेजने वालों के नाम अनिल कुमार दुबे साहब, और इनको भी हिंट बहुत पसंद आया, थैंक यू अनिल साहब। डॉली अरोरा भी कहती हैं उनको बहुत पसंद आया ये हिंट जो दिया गया था। सही जवाब सुप्रिया गुप्ता जी ने लिख भेजा। चलिए अब आपको अगले गीतों की तरफ ले चलूं। और हम बात कर रहे थे कि 8 times नेशनल अवार्ड विनर रहे हैं ये बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए यशुदास जी। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर। कैन यू गेस हाउ मेनी टाइम्स? 25 times फॉर प्लेबैक सिंगिंग। क्या बात है, बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इनको सम्मानित किया 25 बार, जिसके बाद इन्हें कहना पड़ा कि सर अब आप मुझको कंसिडर करना बंद करें अवार्ड्स के लिए। तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड 5 बार इनको मिला बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने दिया। वेस्ट बंगाल स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगिंग के लिए इनको मिला। और इस बात को मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ, इस बात को कि ये वेस्ट बंगाल से इनको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इनको अवार्ड जो दिया बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगिंग के लिए बंगाली सॉन्ग के लिए। तो बात ऐसी थी कि मन्ना दा यानी कि मन्ना डे साहब ने एक गाना गाया था जो मलयालम में गाया था, और इन्होंने वही गाना जो है बंगाली में गाया यशुदास जी ने। तो यशुदास साहब को बंगाली गाने के लिए ये अवार्ड दिया, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड वेस्ट बंगाल से इनको मिला। तो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने इनको सम्मानित किया। आंध्र प्रदेश स्टेट फिल्म्स अवार्ड 4 times ही वन दैट, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने दिया। जेसी डेनियल अवार्ड इनको गवर्नमेंट ऑफ केरला ने दिया। ऑनरेरी डॉक्टरेट भी दिया गया इनको, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला, केरला यूनिवर्सिटी की तरफ से और MG यूनिवर्सिटी की तरफ से, 3 जगहों से इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया गया है म्यूज़िक की फील्ड में। आइए आपको और कुछ बातें बताता रहूँगा इनके बारे में, लेकिन अब ले चलता हूँ आपको ऐसा गाना सुनवाने के लिए जो मैंने लाइनअप किया हुआ है। ठीक है, हाँ अभी क्या होता है ना, कुछ कुछ बीच में गैप आता है तो थोड़ा सा लाइनअप जो किया होता है गड़बड़ा ना जाए, उसके लिए कंफर्म कर रहा हूँ। तो आपकी प्रेजेंस के हिसाब से अगला गाना मैं लेकर जो आया हूँ आपके लिए उसको आप पहचान जाएंगे हिंट सुनते ही, और बहुत ही शानदार गाना है ये। तो बताइए कौन से गाने की यहाँ पर फरमाइश आई है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हक

0: दोस्तों, इस गाने की फरमाइश की है शेखर अग्निहोत्री, डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री, सुरेश सप्रा, नीतू सप्रा, पवन कुमार सिंह, शालिनी सिंह और ब्रिजेश दीक्षित जी ने। तो इस बार बच्चन साहब के पीछे आवाज दी है यशुदास जी ने, अगर आपको याद आया हो।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब

0: दोस्तों अपने अपने ज़िंदगी से जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू बन जाते हैं, तो जिस वजह से इसमें कई आवाज़ें आपने सुनी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और येशुदास साहब की आवाज़ थी इसमें, खयाम का इसमें संगीत था और साहिर लुधियानवी के बोल 1978 की फिल्म त्रिशूल से लिया गया नगमा आपने सुना। और कितनी शानदार तरह से इसमें दो लोग यानी कि शशि कपूर और हेमा मालिनी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब को कि मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। और अमिताभ जहां पर जिनकी के पीछे यशोदा साहब की आवाज़ है वो कहते हैं ये बेकार बेदाम की चीज़ है। तो इस तरह से बातचीत इसमें की गई है और सुप्रिया गुप्ता जी को भी ये लाइन बहुत पसंद आई, कहती हैं सही कहा, ये बेकार बेदाम की चीज़ है। तो दोस्तों इस तरह के खूबसूरत गाने जिसमें कि अमिताभ के पीछे, अमिताभ बच्चन के पीछे येशुदा साहब ने अपनी आवाज़ दी है, क्या शानदार तरह से गाया गया है दोस्तों। तो येशुदा साहब की आवाज़ में जो कशिश, जो इम्पैक्ट हुआ करता था, उससे प्रभावित होने से कोई भी बच नहीं सकता था। एक बार सुने उनको हमेशा के लिए फ़ैन हो जाएंगे आप, ऐसा जादू है उनकी आवाज़ में। यहाँ पर इस गाने का हिंट सुनकर डॉली अरोरा को हिंट बहुत अच्छा लगा, कह रहे हैं कि गानों पर आपकी आवाज़ बढ़िया फिट हो रही है, बैठती है, ऐसा कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपको ये एफर्ट पसंद आया। और इसी से रिलेटेड मेरे को एक और मैसेज याद आ रहा है, जो मैंने आपको कहा कि हमारे साथ अतुल त्यागी साहब अपने मदर सुमन जी के साथ और अपने वाइफ के साथ इस शो में शामिल हैं। तो सुमन आंटी ने क्या मैसेज अपने आशीर्वाद को एक रिकॉर्ड करके भेजा है, मैं आपको सुनवाता हूँ।
1: नमस्कार बेटा, खुश रहो, जीते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सुमन आंटी एंड अतुल साहब, थैंक यू सो मच फॉर पासिंग ऑन दिस मैसेज टू मी। और उम्मीद करता हूँ अगले गाने जो अभी लाइंड अप हैं वो भी पसंद आएंगे आप सभी को। तो चलिए सही जवाब आपके हमें मिले और सही जवाब देने वालों की मैं बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे दो जो हैं ऑफ टॉपिक सॉन्ग्स की फरमाइश की जा रही है। विनोद साहब, आज आपने फरमाइश जो की है वो कुछ और टॉपिक के लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके सॉन्ग को इसमें शामिल करने की। आपके और एक और हमारे श्रोता जो सुनवाना चाहते थे ऑफ टॉपिक सॉन्ग, मैंने शायद मेंशन किया था कुछ टाइम पहले, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि वो कौन सा गाने की फरमाइश। हाँ, राजीव सक्सेना साहब कहते हैं कि इनको भी एक ऑफ टॉपिक गाना सुनना है। तो देखिए साहब, मैं कोशिश में हूँ, पहले येशुदास साहब के इतने शानदार गाने गाए हुए हैं उनको मैं कुछ हद तक पूरा कर लूँ, फिर आप लोगों की फरमाइश तक पहुँचता हूँ। तो दोस्तों सही जवाब जिन्होंने लिख भेजे उनकी बात करते हैं। पहले तो पवन कुमार सिंह साहब, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। पवन साहब, उम्मीद करता हूँ आपको ये गाना पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे याद है आपकी फरमाइश आ चुकी है इस फिल्म के, इस गाने की और दूसरे गानों की भी। तो त्रिशूल फिल्म में जो गाने हैं वो आपको बहुत पसंद हैं, जैसा कि मुझे याद है आपकी फरमाइशों पर बेस्ड। तो पवन कुमार सिंह साहब ने सही जवाब लिख भेजा शेफाली श्रीवास्तव जी के साथ साथ, और सुरेश सप्रा जी ने सही जवाब लिख भेजा है, अमिताभ शर्मा जी, प्रेमा शर्मा जी और ब्रिजेश दीक्षित साहब, शालिनी सिंह जी, संदीप सिंह जावा साहब, शेखर अग्निहोत्री जी। शेखर भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट, और आपका बहुत बहुत शानदार गाना जो है प्ले किया हमने आज इस शो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभिनव कुमार साहब कहते हैं विजय भाई का फेवरेट गाना लगता है मेरे तो फेवरेट एक से एक हैं सर, तो क्या बात है। अब ब्रिजेश दीक्षित कहते हैं, मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता, ना विजय भाई होते ना जीजी लाइव होता। देखिए साहब, फिलॉसफी तक ब्रिजेश भाई की कलम ने लिख डाली है बात, बहुत ही शानदार बात लिखी है ब्रिजेश भाई, थैंक यू। मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता। इस बीच हमारे साथ नंदिनी और शानू जी जुड़ चुके हैं। तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन लगन देखिए, उसके बावजूद उन्होंने एस्टेब्लिश किया कनेक्शन और हमारे शो में शामिल हो गए हैं यूके से। हालांकि अब उनको और भी देर तक जागना पड़ रहा होगा इस शो में शामिल होने के लिए। वी रियली अप्रिशिएट योर परसिवरेंस, योर लव फॉर म्यूज़िक एंड योर डेडिकेशन फॉर द शो, नंदिनी एंड शानू जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपकी बहुत सारी यादें ताज़ा हुई, आपने इस गाने को कई ओकेशंस पर सुना है, ऐसा मुझे यहाँ पर मिल रहा है मैसेज में देखने को। अभिजीत भाई अभी तक हमारे साथ अपने घर से जुड़े हुए थे, घर में से ही सुन रहे थे ट्यून इन करके, लेकिन अब ही इज़ हेडिंग टूवर्ड्स हिज साइट। सो हारूनी, नियर साई रिवर बैंक, एंजॉइंग जीजी शो ऑन द हाईवे अलॉन्ग विद माई कलीग। क्या बात है अभिजीत भाई, थैंक यू सो मच फॉर स्टिल बींग कनेक्टेड व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, व्हाइल यू आर ड्राइविंग। क्या बात है सर। तो दोस्तों, चलिए आपको ले चलता हूँ अगले नगमे की तरफ, और आप एंजॉय कर रहे हैं इस शो को, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो अवार्ड्स क्यों ना मिलें यशुदास साहब को, गायकी इतनी तगड़ी इनकी, बचपन से तालीम हासिल की इन्होंने क्लासिकल संगीत की, कर्नाटक शैली में जानते हैं गाना, मलयालम में जानते हैं गाए हैं इन्होंने, आई मीन टू से मलयाली, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, क्या क्या नहीं इन्होंने गाए हैं गाने, तो क्यों नहीं साहब महारत हासिल हो। और जब आवाज़ में भगवान की प्रेजेंस नज़र आने लगे दुनिया को, तो बस क्या बात है, शो ऐसे ही जो है उसका लेवल बढ़ जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है, आपको भी ये महसूस हो रहा होगा। तो इतनी चीज़ें हैं, मैं यशुदास साहब के बारे में जानकारी हासिल जो मुझे है, मैं चाहता हूँ शेयर हो जाए आपके साथ, लेकिन बहुत सारी जानकारी है इनके बारे में, एक शो में तो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल रहा, लेकिन जितना हो सका मैंने किया आपके साथ इसमें शामिल, और भी करूँगा छोटा मोटा जो भी मेरे पास वक्त रहता है उसमें हासिल जो भी हुई है जानकारी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें एक चीज़ इनको एडमिरेशन मिली है, कहते हैं कि इन हिज एक्सेप्टेंस स्पीच ऑफ विनिंग द सोरालय कैराली यशुदास अवार्ड 2006, ए आर रहमान सेड, आई एम ग्रेटली ऑनर्ड बाय सोरालय जेस्चर एंड गेटिंग दिस अवार्ड फ्रॉम माय मोस्ट फेवरेट सिंगर मिस्टर यशुदास। तो ये ए आर रहमान साहब के कही हुई बातें थी जब उनको अवार्ड दिया गया, यशुदास साहब के नाम पर बनाए हुए अवार्ड ए आर रहमान को मिला, बहुत खुश हुए वो। और ये भी कहते हैं वो, ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वॉइसेस एवर इन द वर्ल्ड। इन अनदर ओकेशन, एट अनदर ओकेशन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू ही सेड ऑफ यशुदास, हिज वॉइस इज अनमैच्ड, हिज वॉइस इज गॉड गिवन एंड आई हैव बिन हियरिंग हिज सॉन्ग सिंस आई वॉज 3 ईयर ओल्ड। ये है ए आर रहमान के शब्द जो यशुदास साहब के लिए कहे गए उनके द्वारा। दोस्तों, हमारे साथ मधुसूदन दीक्षित साहब अपने तमाम साथियों को लेकर हमारे शो में शामिल हैं, और कुछ सेलिब्रेशन भी आज है वहाँ पर, तो कह रहे हैं कि इनके साथ जुड़े हैं दर्शन सिंह साहब, बजाज जी, प्रद्युमन गुप्ता जी, विनोद कुमार गुप्ता साहब, दर्शन सिंह दुआ जी, राकेश गुप्ता, प्रमोद पांडे एडवोकेट जी जो हैं, प्रमोद जी, और बजाज साहब के सभी परिवारजन शामिल हैं। तो क्या बात है, तो कहते हैं कि नगर कीर्तन कुटिया साहब से सदर बाजार गोविंदगंज होते हुए बजाज साहब के प्रतिष्ठान श्रृंगार साड़ी केंद्र के सामने फूल मालाओं और

गुरु महाराज, तो यही हमारी इच्छा है और शुभकामनाएं है सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं के लिए। सो मॉर्निंग वॉकर्स नगर कीर्तन में शामिल हुए ये कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप भजन पूजन के दौरान भी जो है इस शो में शामिल रहते हैं, तो क्या बात है साहब, आपकी वजह से हमको भी कुछ पुण्य हासिल हो जाता है। थैंक यू सो मच मधु जी, एंड आपके तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। संदीप सिंह साहब जो उदयपुर में हैं, ये भी कंफर्म करते हैं, कह रहे हैं कि आज सब जगह नगर कीर्तन है। वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, थैंक यू सो मच। चलिए तो आपको अब मैं सुनवाता हूँ वो गाना जिसके लिए मैंने थोड़ा वेट किया। मैं कोशिश में हूँ कि दीपेश साहब मैराथन स्टार्ट कर चुके होंगे और ट्यून्ड इन होंगे, हमारे शो को सुन रहे होंगे। चलिए हम उनके ही फरमाइश का गाना सुनवाते हैं आपको, धीरे धीरे सुबह हुई। ये गाना है जो कि दीपेश पाठक, राजेश यादव और शालिनी सिंह जी की फरमाइश पर हम लेकर आए हैं, धीरे धीरे सुबह हुई। और मैराथन भी दीपेश साहब आपकी शुरू हुई, चलिए शुभकामनाओं के साथ ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ।

हैसियत फिल्म से लिया गया नगमा आपने सुना, पप्पी लहरी का संगीत बद किया हुआ था, बोल थे इंदीवर के, 1984 में रिलीज़ हुई फिल्म। क्या खूबसूरत गाना था, दीपेश पाठक, शालिनी सिंह जी और आपकी एक और श्रोता की फरमाइश पर यह गाना हमने लिया था शो में, और उनका नाम राजेश यादव साहब। और जैसा कि मैंने कहा था कि बप्पी दा कह रहे थे अपने एक इंटरव्यू में कि उनके गानों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली जो दो आवाज़ें हैं उनमें एक किशोरदा और दूसरे यशुदास जी। तो आपने महसूस किया, देखिए क्या लेवल पहुंचता है जब ये गाते हैं, आपको उस राग का मॉर्निंग का जो जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इनकी आवाज़ में आपको सुनाई देगा, आप पहुंच जाएगा आपका दिमाग कि ये सुबह का राग है। वो सुर इनके इतने तगड़े, इतने पक्के यशुदास साहब के, लाजवाब गायकी दोस्तों, उसका ही एग्जांपल था ये गाना। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग रिक्वेस्ट। हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं पार्थो डे साहब, कोलकाता से शायद जुड़ते हैं अब मेरे को याद, अगर लोकेशन सही से याद है तो। और इनके साथ साथ रशीद सर न्यू दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ अगले गीतों की तरफ, लेकिन इस बीच हमारे साथ विकास ढींगरा साहब जुड़ गए हैं, वो भी ट्रैवल पे हैं, जस्ट एयरपोर्ट पे लैंड की है इनकी फ़्लाइट और इमीडिएटली इन्होंने ट्यून इन किया। कहाँ से किया ये भी एक बहुत शानदार बात है। सो ही जस्ट लैंडेड एट शंघाई चेन्नई, सॉरी चाइना, शंघाई चाइना से जो है फ्लाइट जैसे लैंड की, वहीं से इन्होंने ज्वाइन किया विकास भाई ने। क्या बात है विकास भाई, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस ऑन द शो। और विकास जी कहते हैं एन्जॉइंग द शो नाउ स्टिल एट द एयरपोर्ट, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी हियर। लाइकवाइज सर, थैंक यू सो मच, बहुत खुशी होती है, आप वर्ल्ड टॉटलर हैं, आप तमाम कंट्रीज़ में जाते हैं लेकिन हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहते हैं हमारे शो में, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके इस शो में, थैंक यू सो मच। देवेंद्र कुमार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं शाहजहांपुर से, और विनोद रोहिला साहब आज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमारे शो में शामिल हैं, और इनके साथ हैं मिस्टर विवेक रोहिला एंड शालू रोहिला जी, एंड ओके आप थोड़ा क्लियर कीजिए आपका मैसेज जो है प्लीज़ विनोद साहब। तो ये सॉन्ग जो है भैरव राग पर बेस था, प्रेमा जी की तरफ से ये मालूमात हासिल हुई, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग दैट। आई जस्ट मेंट टू से कि भाई जो सुर के इतने पक्के और आवाज़ के इतने प्योर वो हैं यशुदास जी, आपने कंफर्म किया कि राग में कितना दम होता है, कितने अच्छे से उसका असर पैदा होता है जब आप उसमें गाते हैं गाने, तो क्या बात है। ठीक है ओके, विनोद साहब आपकी रिक्वेस्ट आप डेडिकेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपका सॉन्ग ज़रूर सुनवाऊंगा, बट थोड़ा सा वक्त दीजिए और फिर ऑफ टॉपिक सॉन्ग लेता हूँ। ये अगला सॉन्ग जो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो भी एक बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर सॉन्ग है, बहुत पसंद किया जाता है, आप इसके हिंट को सुनकर ही पहचान जाएंगे कि कितना तगड़ा गाना आने वाला है अब अगला।

दोस्तों, ये गाना आप सुनने जा रहे हैं शालिनी सिंह, ब्रजेश दीक्षित, सुरेश सप्रा, सुप्रिया गुप्ता, अनिल दुबे जी की फरमाइश पर। उम्मीद करता हूँ आपने ये गाना पहचान लिया होगा और पसंद भी करते हैं।

दादा फिल्म से लिया गया ये सॉन्ग आपने सुना, और उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपके सही जवाबों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको ऑफ टॉपिक सॉन्ग की तरफ ले चलता हूँ। बात है यशोदा साहब के फेवरेट कौन थे सिंगर, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले। उन्हीं सिंगर के गाए हुए एक ऑफ टॉपिक सॉन्ग को ले रहा हूँ। विनोद रोहेला साहब हमारे साथ बहुत वक्त से जुड़ते रहे हैं इस शो में, लेकिन उनकी फरमाइश मैंने शायद ही प्ले की हो, क्योंकि जनरली ऑफ टॉपिक उनकी रही है फरमाइश, उनके कुछ फेवरेट्स हैं सिंगर्स तो। लेकिन आज जो है ज़रूर इनकी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो रेलेवेंट भी है। जैसा मैंने आपको कुछ बताया थोड़ी देर पहले कि यशोदास किन को अपना फेवरेट मानते हैं, डायहार्ड फैन रहे हैं शुरू से, तो इस वजह से मैं आपको उनके ही गाए हुए जो है सॉन्ग को सुनवाने जा रहा हूँ। लेकिन गाना आप ज़रूर एंजॉय करेंगे, विनोद साहब की रिक्वेस्ट बहुत ही शानदार है। और ये प्ले करवाना चाहते हैं गाना, ये सेइंग दिस इज़ फॉर शद्दू एंड शाली, सो इन दोनों के लिए ये सॉन्ग जो है डेडिकेट करवा रहे हैं। तो लीजिए विनोद साहब अपने जो है फ्रेंड्स और फैमिली के लिए डेडिकेट किए हुए इस गाने को आप एंजॉय कीजिए। बहुत ही शानदार फरमाइश है आपकी। एनीवेज ऑफ टॉपिक यानी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, आप तैयार हो जाइए पहचानने के लिए कि कौन से गाने की फरमाइश लेकर आए हैं विनोद जी।

दोस्तों, ये गाना अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, और थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग रिक्वेस्ट विनोद रोहिला जी, एंड आई होप एंड यू हैव ऑलरेडी कन्फर्म दैट यू आर एंजॉयिंग इट विद द पीपल हु यू हैव डेडिकेटेड दिस सॉन्ग टू। आपके तमाम सही जवाब हमें मिले दोस्तों, और उनमें हैं नाम सुप्रिया गुप्ता, राहुल वाजपेयी, अतुल त्यागी, डॉली अरोरा, संजीव अरोरा और पवन कुमार सिंह, संदीप सिंह, पंकज सक्सेना, ब्रिजेश दीक्षित, सुरेश सप्रा और उनके तमाम साथी। चलिए दोस्तों, आपको कुछ और गाने जो मैंने लाइनअप कर रखे हैं वो सुनवाऊं। तो अगला गाना जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो सुनवाते हैं आपको नंदिनी और शानू जी के साथ साथ पवन कुमार सिंह, शेखर अग्निहोत्री, शालिनी सिंह और विकास ढींगरा जी की फरमाइश पर। बहुत ही शानदार गाना है, आप इसको सुनिए और आपको याद आएगा आपने आप इस फिल्म का लिया हुआ एक गाना या दो गाने सुने हैं अभी ऑलरेडी। अब ये तीसरा गाना भी बहुत ही शानदार है, तो पहले इसको सुनिए फिर बताते हैं आपको कैसा आपने इसको महसूस किया गाने को सुनकर। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, तो पहले सुनिए फिर बात करते हैं आपके साथ।

त्रिशूल फिल्म से लिया गया एक और ख़ूबसूरत गाना आपने सुना। एक और ऑफ टॉपिक रिक्वेस्ट है, राजीव सक्सेना साहब जो कि जालंधर से हमारे साथ जुड़ते रहे हैं बहुत वक्त से, इन्होंने ऑफ टॉपिक सॉन्ग भेजा है, तो दोस्तों वो मैं शामिल करने के लिए अब लाया हूँ क्योंकि बहुत इंतज़ार हुआ है इनके गाने का। तो मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगा, गाना बहुत शानदार है और आप इसको हिंट को पहचान के मुझे सही जवाब लिख भेजेंगे उम्मीद करता हूँ। तो राजीव सक्सेना साहब भी आज प्रभात फेरी में शामिल हैं, उनकी सोसाइटी में भी आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो क्या बात है। चलिए साहब, राजीव जी आपकी फरमाइश का गाना आ रहा है, आप एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए और दोस्तों आप पहचानिए इस गाने को।

गुड मॉर्निंग, आप लोगों से मिलने के लिए आ गई हूँ। मैं हूँ आरजी अदिति, प्यार के दस्तावेज सजा कर लेकर आती हूँ। और आप लोग जानते ही हैं, मैं शनिवार 10 से 11 के बीच आप लोगों से रूबरू होने के लिए प्यार के दस्तावेज सजा कर लेकर आती हूँ। प्यार जो शब्द है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा है सबके लिए। कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, लेकिन जो हारते हैं क्या वो सचमुच में हारते हैं? वो तो उम्र भर का साथ पा जाते हैं अपने ख्वाबों ख्यालों में। Isn't it so? हम जो पा जाते हैं अपने पास पा लेते हैं, और उन्हें हम हर रोज देख पाते हैं कि बस इन्हीं से मुझे मिलना था, इनके साथ मुझे रहना था। लेकिन वो ख्वाबों में जीना कितना खूबसूरत है, वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ख्वाबों की में जीने की जब बारी आती है हमारी, हम बहुत कुछ महसूस करके जीने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं कि हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ देंगे, हम वो हैं जो तुम्हारी सांसें रुके तो अपनी सांसें छोड़ देंगे, हम वो हैं जो तुम्हारी सांसें रुके तो अपनी सांसें छोड़ देंगे। उफ़, शायर ने क्या कहा है, क्या खूब कहा है। इस सर्द मौसम में जब शायरी होती है गर्म गर्म वाली, नरम नरम वाली, तो कैसा लगता है सुनने में। फुर्सत मिले तो पूछ लिया करो उनके दिल का हाल भी, फुर्सत मिले तो पूछ लिया करो उनके दिल का हाल भी, जिनके सीने में दिल की जगह तुम धड़कते हो, तुम धड़कते हो। मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं तब तो मैं जमाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं तब तो मैं जमाना देखूं। जी, साल की शुरुआत में हम बहुत सारी प्यार भरी बातें करते हैं, ताकि हमारे प्यार के उन दिनों के एहसासों को हम फिर से रीरन कर सकें, उन रास्तों में फिर से जा सके जिनको प्यार मोहब्बत मुकम्मल होती है। उनसे हमारी ये शिकायतें नहीं, हमारी ये बातें नहीं है, उनके तो प्यार मुकम्मल हो चुका। हमारी बातें उनसे हैं जो वो अपना प्यार ना पा सके। बड़ा दर्दनाक होता है ना पाना, पर जो मुकम्मल कर लेते हैं उनकी खुशी में हम शामिल होके और भी और जी लेते हैं। आएंगे तुम्हारे शहर में बारिश बनकर, आएंगे तुम्हारे शहर में बारिश बनकर, तुम हमें छत पर आ जाना। रिमझिम बरसूंगी मैं, रिमझिम बरसूंगी मैं, तुम बूंद बूंद होठों से छू जाना, तुम बूंद बूंद होठों से छू जाना। ब्यूटीफुल शायरी लिखते हैं। यही तो बात होती है कि शेर व शायरी, प्यार मोहब्बत, ये सब कुछ एक दूसरे से बंधे हुए हैं, पिरोए हुए हैं। उसका चेहरा ना देखूं तो सुबह नहीं होती, उसका चेहरा ना देखूं तो शाम नहीं होती, लेकिन कमबख्त हमारी ये किस्मत कि उसके चेहरे के आगे हम कभी थे ही नहीं। जी हाँ, घर वालों ने मना कर दिया होगा ना, इसीलिए कि उसके सामने हम टिक भी नहीं पाए। कि काश हम उतने लायक होते, काश हमें इतनी जल्दी प्यार ना हुआ होता, काश हम अपने पैरों पे खड़े होते तब कोई क्या मना कर लेता। ठीक है, अब आती हूँ, मिलती हूँ फिर से आप लोगों को। प्यार के दस्तावेज सुनते रहिएगा। मैं हूँ आरजे अदिति, आप लोग मुझे सुनते हैं बहुत सारी जगहों पे, यूट्यूब पे, एटी प्रोडक्शंस के अंडर, स्पॉटिफाई में दिल की बात बाई राधा सिंह्स, एंड इंस्टा पे भी सुनते रहिएगा मुझे। मिलती हूँ थोड़ी ही देर बाद। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि मैं आ ही जाती हूँ वापस।